नमस्कार, एफएम 107.2 MHz पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 और 5 सेकंड हुए हैं। हम अपना आज का प्रसारण आरंभ कर रहे हैं।

0: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। छह बजने को हैं श्रोताओं, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

0: मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अब हमारा प्रसारण हम मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मुस्कान एक ऐसा उपहार है जिसे बिना कुछ खर्च किए भी किसी को खुशी दी जा सकती है। ये था आज का चिंतन।

हम विविध भारती से बोल रही हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर झरोखा में। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 203। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का 7वां भाग। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। सुनिए इस कार्यक्रम का भाग 30। लेखन है मिलिंद सबनीस का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार पृथ्वीराज कपूर पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए हेलो फरमाइश। संवादन है मंदाकिनी जोशी का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे आज सुनिए हेलो सहेली। हेलो सहेली कार्यक्रम में संवादन होगा चंचल वर्मा का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 4 बजे पिटारा में सुनिए गीतों भरी कहानी। कहानी है रिश्ते। लेखन है विधि जैन का। संपादन है

काजल भद्रगी का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। छह बजकर तीस मिनट पर संध्या रंजन। 7 सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता। 8 हवा महल में सुनिए झलकी, एक दिन का प्यार। लेखन है V.M. आनंद का, निर्देशन है सुदर्शन कुमार का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। 9 सुनिए आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता पंकज कपूर पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10 सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर है ज्योति गौर का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

मर्मस्थल पर कैसी चोट खाकर और मर्मांतक पीड़ा की किस स्थिति में भरत, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा दल बल सहित तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं, इसकी कथा वो भरद्वाज ऋषि को सुना चुके हैं। अयोध्या से उनके साथ आया जनसमूह अब भरद्वाज जी का अतिथि है। इतने बड़े समाज के स्वागत सत्कार की ऋषि की चिंता देख सभी रिद्धि सिद्धियों ने उपस्थित होकर सारे प्रबंध कर दिए। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित है, सबको सभी कुछ उपलब्ध है। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा का आदर करने के लिए भोग ऐश्वर्य के सभी साधनों के साथ भरत रहे अवश्य, किंतु उन्होंने उनका स्पर्श तक नहीं किया।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा की जा रही है। कल आपने सुना था राग दरबारी, आज प्रस्तुत है राग भैरवी।
1: संगीत सरिता के श्रृंखला में आपका एक और बार स्वागत है। आजकल मैं बता रही हूँ हिंदी भाषा में महाराजा स्वाति तिरुनाल की कुछ कृतियाँ, जिनमें उत्तर और दक्षिण का संगम है। स्वाति तिरुनाल थे दक्षिण के केरला प्रांत के, और इन कृतियों को गाने की विधि कर्नाटक पद्धति से जुड़ी हुई है, लेकिन साहित्य है हिंदी में और राग हैं हिंदुस्तानी पद्धति के। मैं राग वृंदावनी सारंग, दरबारी और धनाश्री में कृतियाँ पेश कर चुकी हूँ, तो लीजिए आज सुनाती हूँ भैरवी राग में एक रचना। उससे पहले महाराजा स्वाति तिरुनाल के बारे में दो चार शब्द और भी कह दूँ। स्वाति तिरुनाल और संत त्यागराजा, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, जो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहलाते थे, सब समकालीन वाद्यकार थे। स्वाति तिरुनाल तिरुवांकूर प्रांत के महाराजा थे, और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपने शिष्य नहीं तैयार किए। महाराजा थे तो शिष्य नहीं ले सकते थे शायद, लेकिन

लेकिन उनकी रचनाएं उतनी ही श्रेष्ठ माने जाते हैं जितने त्रिमूर्ति वाग्गेयकारों का। कहा जाता है कि वे अपनी मातृभाषा मलयालम के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, उर्दू और फारसी में भी बहुत ही निपुण थे। एक पुस्तक है ग्रेट मास्टर्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, जिसमें स्वाति तिरनाल का भी नाम शामिल किया गया है। उनके दक्षिणवासी होते हुए भी उन्होंने उत्तर भारतीय संगीत में काफ़ी रुचि और पांडित्य दिखाई। उत्तर के तीन मशहूर संगीतकार स्वाति तिरनाल के दरबार में यानी कोर्ट म्यूजिशियन के रूप में जुड़े हुए थे। वे थे ग्वालियर के अलाउद्दीन और लक्ष्मण दास और पंजाब के सुलेमान। यह था सन 1829 से 47 तक की बात। स्वाति तिरनाल ने शास्त्रीय संगीत के बारे में एक पुस्तक भी लिखी, खास करके मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य के लिए इन्होंने काफ़ी बंदिशें बनाई हैं। हाँ, यह बताना भूल गई कि स्वाति तिरनाल ने न केवल ध्रुपद बल्कि टप्पा भी कंपोज किए थे, लेकिन ये मिल नहीं रहे हैं आजकल। तो आज आपको सुनाना चाहती हूँ भैरवी राग में एक कृति जो कहरवा ताल में है। एक और बात यहाँ बताना चाहूँगी कि भैरवी जो दक्षिण में गाते हैं वो उत्तर भारतीय भैरवी से एकदम अलग है। कर्नाटक पद्धति में जो भैरवी गाते हैं उसमें काफ़ी ठाट के स्वर लगते हैं। मैं अब तो कृति जो पेश करने जा रही हूँ वह उत्तर भारतीय पद्धति के भैरवी राग में रचित है। तो सुनिए रामचंद्र प्रभु राग भैरवी में।

0: आलाप का ये गीत राग भैरवी पर आधारित था। आवाजें थी लता मंगेशकर और दिलराज कौर की। कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग भैरवी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है।
2: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

देखे

आई। राजे के बेटे संग खेले यही उसके मन भाई। अच्छा अब यही कहानी गाकर तुम्हें सुनाता हूँ।

0: अच्छा बच्चों, जानते हो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत देर तक आपस में दोनों जी भर कर खेले। दोनों ने खाए मिलजुल कर सेब, अनार और केले। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें वो शहजादी मिल जाए तो उसके साथ खेलोगे? वो बच्चों को बड़ी उम्दा उम्दा चीजें खिलाती है। कहो हाँ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आज पृथ्वीराज कपूर की याद का दिन है। अभी आपने उनके द्वारा अभिनीत फिल्म रुस्तम सौराब का गाना सुना। इस गाने को गाया था सुरैया ने, कमर जलालाबादी के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

0: गाना बोल थे प्रदीप के।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवानी।

आप सुन रहे थे हरिश्चंद्र तारामती। इस फिल्म से ये गाना हेमंत कुमार की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से

शमशाद बेगम और मुबारक बेगम की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना, योगेश के बोल, रॉबिन मुखर्जी का संगीत। कार्यक्रम के बाकी गाने संतराल के बाद।

आप सुन रहे थे फ्लाइंग सर्कस फिल्म से गाना, कमल बुरात की आवाज में, योगेश के बोल रॉबिन मुखर्जी का संगीत। आज गीतकार योगेश की याद का दिन है। इन्होंने हिंदी फिल्मों में कई बेहतरीन गाने लिखे। अगला गाना सजा है गीतकार योगेश की बोलों से, टार्जन और डेलिले फिल्म से, महेंद्र कपूर और कमल बुरात की आवाजों में, रॉबिन बनर्जी के बोल।

0: अभी आप सुन रहे थे टार्जन और डलाई लव फिल्म से ये गाना। और अब एक बहुत ही अहम सूचना।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अपना कल।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे एक रात फिल्म से ये गाना, योगेश के बोल उषा खन्ना का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: वीको

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमेरा ही प्यार के। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बातों बातों में इस फिल्म के गाने के साथ। अमित कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, योगेश के बोल राजेश रोशन का संगीत।

आज का हम है राही प्यार की कार्यक्रम सजा है योगेश के बोलों से। गीतकार योगेश को याद कर रहे हैं छोटी सी बात इस फिल्म के इस गाने के साथ। येसुदास की आवाज सलील चौधरी के बोल।

0: येसुदास और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गाना, योगेश के बोल सलिल चौधरी का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

मोहे राहे प्यार के कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं मेरे भैया फिल्म से, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में योगेश के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में

0: अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी।

हमारे श्रोता सुन रही थी कार्यक्रम हम ही राही प्यार के। ये कार्यक्रम हमने आपके लिए विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया। श्रोताओं, हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय ये 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए समाचार रिले करेंगे।

0: भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर

0: जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज

0: उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज़्यादा पूरे हो गए।

0: में ना रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर

0: मजबूत ना होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension.

0: राष्ट्रीय सभा का 21वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1905 को बनारस में हुआ। नरमपंथियों के नेता, नामदार और प्रखर देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगस्त महीने से बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भड़का हुआ था। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कुछ रियासतों के साथ ब्रिटिश समर्थक प्रतिष्ठित लोगों ने खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस वाराणसी अधिवेशन में उनके भारत आगमन पर आनंद व्यक्त करते हुए इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ को कांग्रेस की यह राजभक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे लिखते हैं,
1: राजपुत्र आए, मुल्क के सभी पात्रों के पुत्रों ने उन्हें घेर लिया। अन्य कोई भी वहां प्रवेश न पा सका। इस घेरे पर कोतवाल पुत्रों का पहरा लग गया, इसलिए उन्हें शिरोपा प्राप्त हुआ। इसके बाद ढेर सारे पटाखे छूटे और राजपुत्र जहाज पर चढ़कर वापस चले गए।
2: फिर भी इस अधिवेशन से राजसत्ता के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली नेताओं की नरम भाषा धीरे धीरे बदलने लगी। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत में ही अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें देश भर में पहुंच चुकी थीं। इस आंदोलन में बंगाली जनता के पीछे देश की संपूर्ण भारतीय जनता खड़ी है, इसका एहसास इस अधिवेशन से हुआ। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाल के विभाजन को रद्द करने का आह्वान ब्रिटिश राजसत्ता से किया गया।

से यह अधिवेशन स्मरणीय रहा। रविंद्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी चौधरानी और उनके पति रामभुज दत्त इस अधिवेशन में उपस्थित थे। सरला देवी का हाल ही में विवाह हुआ था। भगिनी निवेदिता और उनकी सहकर्मी अबला बसु भी अधिवेशन में उपस्थित थीं। अधिवेशन शुरू हुआ और दर्शकों में से आग्रह होने लगा कि सरला देवी चौधरानी वंदे मातरम गीत गाएं। सरला देवी चौधरानी एक उत्तम कवियत्री और गायिका भी थीं। श्रोताओं के इस आग्रह से अध्यक्ष नामदार गोखले चिंतित हो गए। बंग भंग विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण वंदे मातरम शब्दों के उच्चारण पर भी जिलाधीश ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में मंच से ही वंदे मातरम का गायन होना नरमपंथी गोखले जी को खतरनाक लगने लगा। अंततः श्रोताओं के आग्रह के कारण उन्होंने सरला देवी से कहा कि वंदे मातरम की शुरुआती कुछ पंक्तियां ही गाएं, परंतु सरला देवी ने अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम गाना शुरू किया और पूरा गाकर ही समाप्त किया।

0: घोषणाओं से सारा अधिवेशन गूंज उठा। इसी समय सरला देवी ने ये गीत गाते हुए सप्तकोटि कंठ इन शब्दों की जगह त्रिशत कोटि कंठ शब्द बदल दिए। वंदे मातरम के शब्दों में किया गया ये पहला बदलाव था। इस अधिवेशन में एक और ऐतिहासिक घटना घटी, वो ये कि भारत के पहले राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन इसी अधिवेशन में पहली बार हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय अपनी स्वतंत्र पहचान वाला भारत का राष्ट्रध्वज होना चाहिए, ये विचार सन 1900 के बाद सामने आया। 1905 में बनारस में हुए इस कांग्रेस अधिवेशन में पास के एक अलग मंडप में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी के बीचों बीच भारत का कहा जाने वाला पहला ध्वज जानबूझकर प्रदर्शित किया गया था। विशेष बात ये कि पूरी तरह भारतीय संकल्पना वाले इस ध्वज की मूल परिकल्पना जन्म से विदेशी और मन से पूरी तरह भारतीय बन चुकी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता की थी।
1: लाल रंग के इस वर्गाकार ध्वज पर बीच में इंद्र के वज्र का पीले रंग का चित्र था। इस चिन्ह के एक ओर वंदे और दूसरी ओर मातरम, ये बांग्ला लिपि के शब्द थे। ध्वज के किनारों पर 108 पीली ज्योतियां थी।

0: यह ध्वज उस प्रदर्शनी में केवल प्रदर्शित हुआ, उसे कहीं भी फहराया नहीं गया, इसलिए इसे पहले ध्वज का दर्जा नहीं मिल सकता। फिर भी तैयार किया गया यह आद्य राष्ट्र ध्वज ही माना जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन रहे वंदे मातरम शब्दों का इस पहले ध्वज पर उपयोग किया जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वंदे मातरम शब्दों का महत्व और सामर्थ्य जैसे जैसे सामान्य जनता के ध्यान में आने लगा, वैसे वैसे अंग्रेज सरकार को उसका उपद्रव महसूस होने लगा। सरकार ने वंदे मातरम गाने या शब्द उच्चारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण वंदे मातरम का प्रभाव और बढ़ने लगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन को वंदे मातरम, स्वदेशी का समर्थन, विदेशी माल का बहिष्कार, इन बातों ने और अधिक बल दिया।
1: सात अगस्त को टाउन हॉल में हुई सभा के कारण बंगाल के विभाजन का आम जनता में जो विरोध था, उस सभा में उसकी हुई तीव्र निंदा और स्वदेशी का आग्रह, ये बातें पूरे देश में फैल गईं। उसमें से पहली बड़ी चिंगारी महाराष्ट्र के पुणे में गिरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में बंगाल के विभाजन पर और कर्जन पर अत्यंत कठोर शब्दों में टीका की थी। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर उस समय पुणे में फर्ग्यूसन महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। 1 अक्टूबर को एक सभा बुलाकर युवा सावरकर ने पुणे के लोगों से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का आह्वान किया।
0: इस सभा में समाचार पत्र काल के संपादक शिवराम महादेव परांजपे और नची केड़कर उपस्थित थे। इस सभा के बाद बाहर गांव से लौटे लोकमान्य तिलक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली और बड़े पैमाने पर करने का सुझाव दिया। 7 अक्टूबर 1905 के दिन लकड़ी पुल के पास मुठा नदी के किनारे पूरे पुणे में घूमकर इकट्ठा किए गए और जुलूस के साथ बड़ी गाड़ी पर लादकर वहां लाए गए विदेशी वस्त्रों की होली की गई। इस होली की आग ब्रिटिशों के लंदन स्थित राज सिंहासन तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी, ऐसा भाषण उस समय लोकमान्य तिलक ने दिया। वंदे मातरम की घोषणाओं के बीच जलती लपटों ने पूरा वातावरण उज्जवल कर दिया। पुणे में हुई विदेशी वस्त्रों की उस विशाल होली के बाद पूरे देश भर में ऐसी होलियां जलने लगी।
1: 1905 के अंतिम 4 महीने ऐसे ही जबरदस्त हलचल के बीते। विभाजन विरोधी आंदोलन की तीव्रता बढ़ी, फिर भी नए आए लॉर्ड मिंटो ने कर्जन की ही नीति आगे चलाई। कर्जन और फुल्लर के जैसे वागबाण न छोड़ते हुए इस आंदोलन के नेताओं को कभी मीठी मीठी बातों से फुसलाकर तो कभी धमकी देकर कार्रवाई का डर दिखाकर इस आंदोलन की हवा निकालने का वे प्रयास कर रहे थे, परंतु आंदोलनकारियों का निश्चय और पक्का होता गया, जिससे लॉर्ड मिंटो भी दमन की नीति और कड़ाई से लागू करने लगे। इसी आंदोलन के कारण पूरे विश्व को ब्रिटिश राजसत्ता के उन्मत्त, अमानवीय और हिंसक व्यवहार का दर्शन हुआ। उसके लिए निमित्त बने वे वंदे मातरम शब्द और बारिसाल में हुआ राष्ट्रीय सभा के युवाओं का अधिवेशन।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 30वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, गायिका अपर्णा केलकर, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग

0: आकाशवाणी पुणे प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

नमस्कार, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आज के पेड़ पे पक चुके हैं, जिंदगी के पेड़ पे पक चुका है आज का फल। तो कल के फल की गुठली हटाइए और आज के फल का मजा उठाइए। आखिर आज का फल कल से हमेशा मीठा होता है। शुरुआत हो रही है कल हो न हो फिल्म के इस गाने के साथ। सोनू निगम की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया में शांति बनाए रखने वाले सैनिकों के साहस और सेवा को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे यंगिस्तान फिल्म से गाना। अरिजीत सिंह की आवाज में कौसर मुनीर के बोल, जीत गांगुली का संगीत।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक बेहतरीन कलाकार का बर्थडे, जिन्होंने मकबूल, एक डॉक्टर की मौत, गांधी हल्ला बोल जैसी फिल्मों में काम किया। इसके साथ साथ इनका टेलीविजन सीरियल ऑफिस ऑफिस भी बहुत चर्चित रहा। हम बात कर रहे हैं एक्टर पंकज कपूर की। सुखविंदर सिंह और रंजीत बोराट की आवाज में आप सुन रहे हैं मटरू की बिजली का मंडोला। फिल्म से गाना गुलजार के बोल, विशाल भारद्वाज का संगीत।

आप सुन रहे थे शानदार फिल्म से ये गाना। इस फिल्म में पंकज कपूर नजर आए अपने बेटे शाहिद कपूर के साथ। जानिए इनकी जिंदगी के बारे में कुछ और किस्से, कुछ बातें आज के फनकार कार्यक्रम में रात 9:30 पर। आप सुन रहे हैं 10 फिल्म से ये गाना शान और के की आवाज में। म्यूजिक विशाल शेखर का।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
3: दादी आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
3: क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे हैं आप गाना डियर जिंदगी फिल्म से, कौसर मुनीर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
3: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

उर्दू गजल को आसान और आम बोलचाल की भाषा में लोगों तक पहुंचाने वाले मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में भोपाल में निधन हो गया। उनकी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली गजलों का इस्तेमाल जुनून, मसान, जीरो और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में किया गया है। हमारी अधूरी कहानी के टाइटल ट्रैक की शुरुआत उनकी बेहद खूबसूरत गजल की पंक्तियों से शुरू होती है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे चेहरे को पड़ जाएगा।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे हमारी अधूरी कहानी फिल्म से ये गाना, रश्मि विराग के बोल, जीत गांगुली का संगीत। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुधा।

0: सूचना को इजाजत।
1: हमारी श्रोता सुन रही थी नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, ये कार्यक्रम हमने आपके लिए विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय 9:30 हुए हैं, तो थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम आज का अखबार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
1: लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम आज का अखबार।
6: आज का अखबार।

0: आज का अखबार।
1: आज का अखबार प्रोग्राम सुन रहे सभी श्रोताओं को सुनीता भगत का नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सी सुबह में, इस कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है। वैसे बाहर अगर आप देखें ना, तो आज आसमान में बादलों की हल्की सी चादर बिछी हुई दिख रही है। भाई हवाएं भी चल रही हैं इस समय सुबह सुबह, और हवाओं में ऐसा लग रहा है जैसे कोई ताजगी खुली हुई है। और मौसम जो है ना, आज जैसे धीरे से कानों में कह रहा है, जरा मुस्कुरा कर इस दिन की शुरुआत कीजिए। भाई कभी कभी ऐसी सुबह ना मन को बड़ा सुकून दे जाती हैं, जब धूप भी शर्माई सी लगती है और हल्की बादलों की छांव दिल को राहत देती है। तो आप भी चाय की प्याली हाथ में ले लीजिए, मुस्कान अपने चेहरे पर सजा लीजिए और जुट जाइए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले पलों में प्यारे से गीत तो आप सुनेंगे ही और बहुत सारी जो खबरें हैं वो भी हमें आप तक पहुंचानी हैं। तो बादलों की ये ढकी हुई जो सुबह है ना, ये कह रही है थोड़ा ठहरिए और इस खूबसूरती को महसूस कीजिए।

तो दोस्तों, सुहानी मौसम और प्यारी सी सुबह के साथ अब वक्त है नजर डालने का देश दुनिया की हलचल पर। क्योंकि सुबह की शुरुआत अगर ताजा खबरों के साथ हो तो दिन की रफ्तार भी बेहतर हो जाती है। तो भाई, जानेंगे देश विदेश, खेल और आपके आसपास की कुछ खास खबरें, खास सुर्खियां, ताकि हमारे श्रोता जो हैं, हमारे सुनने वाले जो हैं, वो हर अपडेट से रूबरू होते रहें। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब बारी है सुबह की ताजा खबरों की, सुर्खियों की।

तो पहले कर लेते हैं अपने देश की बात। श्रोतो, मॉस्को में पहले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया संबोधित। कहा, आतंकवाद के खिलाफ ना हो दोहरे मापदंड, बढ़ावा देने वाले नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई जरूरी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चलाएगी देशव्यापी अभियान। मतदाता सूची संशोधन यानी SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल। कहा, ये लोकतंत्र पर है करारा प्रहार। राहुल गांधी ने CBSE की परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री पर उठाए हैं सवाल। विवादों में रही कंपनी को ऑन स्क्रीन मार्किंग का दिया कॉन्ट्रैक्ट। सीमा सुरक्षा पर केंद्र सरकार सख्त, शाह ने

यह दावा बंगाल सरकार ने 7 दिनों में बीएसएफ को सौंपी 600 हेक्टेयर जमीन, बाढ़ बंदी को बनाया मजबूत। देश के 7 हवाई अड्डों पर शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलेगा रोजगार, सेना ने एयर इंडिया के साथ करार किया। आर्थिक सुस्ती के बीच भारत की है अभी भी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। नीट यूजी की दोबारा परीक्षा के प्रश्न पत्रों को पहुंचाने के लिए वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। बीजेपी ने 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष, केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का अध्यक्ष बनाया गया जबकि अर्चना गुप्ता को हरियाणा का अध्यक्ष बनाया गया है। और जाने माने शायर बशीर बद्र का हुआ निधन, उर्दू अदब में है शोक की लहर। दोस्तों, बशीर बद्र उर्दू शायरी की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिनकी गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और जिंदगी के एहसास बेहद खूबसूरती से झलकते हैं। उनकी शायरी की खासियत यह है कि सरल शब्दों में गहरी बात कह जाना जो सीधे दिल को छू जाती है। उनके कई शेर आज भी लोगों की जुबान पर हैं और महफिलों की रौनक बनते हैं। उन्होंने उर्दू अदब को एक नई पहचान दी और अपनी लेखनी से लाखों दिलों में जगह भी बनाई है। और दोस्तों, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, महसूस करते हैं। और जब बात हो बशीर बद्र साहब की तो हर शेर दिल के किसी कोने को छू जाता है। उन्हीं का एक मशहूर शेर है, उजाली अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो उनकी यादों के जो उजाले हैं हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आपको यहाँ पर हम ये भी बता दें, चंडीगढ़ से उनका खास जज्बाती रिश्ता रहा है और यहाँ के साहित्यकारों ने उन्हें केवल एक बड़े शायर ही नहीं, बेहद सादगी पसंद और इंसानियत से भरे व्यक्तित्व के रूप में याद भी किया है। शहर के साहित्यकारों का कहना है कि बशीर बद्र ने अपनी गजलों से मोहब्बत, रिश्तों और इंसानी एहसासों को नई पहचान दी और उनके जाने से शायरी के एक सुनहरे दौर का अंत हुआ है। अब आपको लिए चलते हैं दुनिया भर की खबरों में, वो खबरें जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी हैं। साइप्रस में यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों से मिले एस जयशंकर, यूक्रेन जंग से लेकर पश्चिम एशिया संकट तक चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान ने अस्थायी संघर्ष विराम 60 दिन बढ़ाने पर जताई सहमति, ट्रंप देंगे अंतिम मंजूरी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने को लेकर अस्थायी समझौता भी हुआ है। तुर्की के काला सागर तट के पास 3 तेल टैंकरों पर हुआ ड्रोन हमला, यूक्रेन पर है इस हमले का शक। हमले का शिकार बने सभी जहाज पश्चिम देशों की प्रतिबंधित सूची में शामिल बताए जा रहे हैं। भारत अमेरिका संबंधों पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के दौरे को विशेषज्ञों ने बताया पेन किलर। सिंगापुर में भारत और सिंगापुर के रक्षा सचिवों की 16वीं रक्षा नीति वार्ता हुई, रक्षा सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले $250 वाले नोट छापने की हुई तैयारी, संसद की मंजूरी मिलना अभी बाकी। रूसी हमलों से बचाव के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से मांगी पैट्रियट मिसाइलें।

ट्रंप को भेजा है पत्र। इबोला संक्रमण रोकने को ट्रंप प्रशासन ने सीमाओं पर बढ़ाई निगरानी, किसी भी संक्रमित व्यक्ति को नहीं मिलेगा प्रवेश। और उधर कांगो में इबोला संकट के बीच भारत ने मानवता के आधार पर भेजी जीवन रक्षक दवाएं।

0: आप इस समय सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार। ये प्रोग्राम आपके लिए विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से इस समय पेश किया जा रहा है FM 107.2 MHz पर। मैं हूँ आपके साथ सुनीता भगत। और इससे पहले कि हम चलें स्थानीय और प्रादेशिक खबरों की ओर, आपको हम बताना चाहेंगे आज सुबह 10:05 पर होगा प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो विषय है वो आप नोट कर लें, दृढ़ निश्चय सफलता का मूल मंत्र। जी, दृढ़ निश्चय सफलता का मूल मंत्र, इसे विषय पर आज आप हमसे बातचीत करेंगे। प्रोग्राम है हेलो चंडीगढ़, समय है सुबह 10:05। और ट्राई सिटी की बात करते हैं, उससे पहले ये एक प्यारा सा गाना सुन लें।
1: उठ सबके कदम देखो रम पम पम

भाई कितना प्यारा सा गीत है ये और मन को कितनी शांति देता है ये गीत, है ना? कितना अच्छा लगा ये गाना सुनकर। बड़े ही सरल से इसके शब्द और कितनी अच्छी भावनाएं इन शब्दों में पिरोई हुई। अब आप जानते हैं ये गीत योगेश ने लिखा है। योगेश के बारे में हमारे वो सब श्रोता जो नहीं जानते तो उन्हें बता दें, योगेश हिंदी फिल्म संगीत के ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने बहुत सरल शब्दों में गहरी भावनाओं को पिरोया। ऐसे गीत लिखे उन्होंने जो सीधे दिल में उतर जाते हैं और आज भी हम सब की जुबान पर हैं। आपको याद होगा कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मुकेश जी का गाया हुआ आनंद फिल्म का गीत, और फिर मन्ना डे साहब की आवाज़ में वो गीत जिंदगी कैसी है पहेली, एक बड़ा ही सुंदर सा गाना, इसे भी मुकेश ने ही गाया, कई बार यूं भी देखा है, बहुत ही सुंदर गीत, और फिर ना जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ। ये सारे जो गीत हैं योगेश के ही लिखे हुए हैं तो आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। हम फिर आपसे कहेंगे कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और ऐसे ही एहसासों को शब्द देने वाले गीतकार थे योगेश। उनके गीतों में जिंदगी की सच्चाई, कह सकते हैं एक मासूमियत, प्यार की मासूमियत और भावनाओं की जो गहराई है वो साफ झलकती है। तो हमने आपको उन्हीं का लिखा हुआ ये गीत सुनवाया। और अब चलते हैं जी स्थानीय और प्रादेशिक खबरों की सुर्खियों की ओर। आप बनी रहिएगा हमारे साथ, इसके बाद खेल की बात भी करेंगे और मौसम की भी। सहकार भारती प्रतिनिधि मंडल प्रशासक से मिला, चंडीगढ़ में सहकारिता आंदोलन मजबूत करने पर हुआ मंथन और सेमिनार की गई तैयारी। तेल कंपनियों ने लोगों से अपील की, पैनिक ना करें, तेल सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी, और पेट्रोल पंपों से बल्क में डीजल खरीदने पर रोक लगी है, रिटेल आउटलेट्स को मिले हैं निर्देश। हल्लो माजरा में 60,000 लोगों को राहत, 45 साल पुरानी डिस्पेंसरी टूटेगी, बनेगी नई बिल्डिंग, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का टेंडर हुआ जारी। एक सप्ताह में ही वीजा कंपनियों की धोखाधड़ी के 15 मामले हुए दर्ज। 11वीं के दाखिले का सोमवार को आ सकता है शेड्यूल, गवर्नमेंट स्कूलों में 13,875 सीटों पर मिलेगा दाखिला, मेरिट और स्कूल परफॉर्मेंस के आधार पर है अलॉटमेंट। पीजीआई में बदली एंटीबायोटिक देने की पद्धति, जांच के बाद ही अब मिलेगी दवाइयां, 5 साल की रिसर्च के बाद ट्रॉमा मरीजों में संक्रमण रोकने की ये नई पहल है। मोहाली में मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन और जुगाड़ू रेडियो पर प्रतिबंध लगा है, अब ये सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। नगर परिषद जीरकपुर चुनाव की मतगणना आज होगी, 124 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। पंचकुला के रामगढ़ में रविवार को होगा हाई अलर्ट, हाई कैलिबर बम का होगा परीक्षण, प्रशासन ने जारी किए निर्देश, छतों और खुले मैदानों में जाने से बचना होगा, सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 तक 2 घंटे घर में ही रहना होगा कैद। पंचकुला के मोरनी क्षेत्र के उत्पादक वीरेंद्र बाजवान ने 12 तरह की औषधीय मशरूम की तैयार, आईआईटी में करेंगे जागरूक। पंजाब सरकार को फटकार, हाईकोर्ट ने कहा 2 दिन में लोकपाल की नियुक्ति पर जवाब दें वरना आदेश जारी किया जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लापता स्वरूपों का मामला,

जांच के लिए एसजीपीसी दफ्तर पहुंची विशेष जांच टीम, नहीं मिले मूल दस्तावेज। पंजाब के नगर निकाय चुनावों की मतगणना होगी आज। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात, घर बैठकर देख सकेंगे चुनाव के नतीजे। हर वार्ड का परिणाम www.sec.punjab.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। पंजाब में स्कूल आधारित मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा की शुरुआत हुई। 3600 सरकारी स्कूलों की लगभग 3 लाख से अधिक छात्राओं को मिलेगा लाभ। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश सरकार को उल्लंघन के मामले में बिहार के 16 वर्षीय पीड़ित को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। सूरजमुखी की खरीद से बच रहे आढ़तियों को 1% आढ़त पर ही खरीद करनी होगी, उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने किया साफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, करनाल के बागवानी विभाग के 14 बागवानी विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय को होंगे समर्पित। प्रदेश में अब ई बसों में भी मान्य होगा विद्यार्थियों का पास। हिमाचल में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव के दूसरे चरण में रिकॉर्ड 80% हुआ मतदान। 1276 पंचायतों में चुने जनप्रतिनिधि। शिमला से चंबा तक धधक रहे जंगल, पिछले साल के मुकाबले 2 गुना बढ़ी हैं घटनाएं। खेलों की सुर्खियों की तरफ चलते हैं तो आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा दूसरा क्वालिफायर मैच। मैच ना होने की सूरत में राजस्थान हो जाएगा बाहर। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन सिंगापुर बैडमिंटन ओपन के एकल वर्ग क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, एचएस प्रणय हुए बाहर। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। 46 चालों में जीत दर्ज करके प्रज्ञानंदा अब दूसरे स्थान पर हैं। भारतीय एथलीट नीपम ने हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स में महिला 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। मौसम की बात भी सुन लीजिए तो आज तूफानी हवाओं और बारिश का है रेड अलर्ट। शाम 4 बजे से रात 9 बजे के बीच असर अधिक रह सकता है। 30 मई को भी मौसम सुहावना बना रहेगा। 31 मई से 1 जून के बीच भी राहत बनी रहेगी। अधिकतम तापमान इन दिनों 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रह सकता है। तो चंडीगढ़ शहर का कल का अधिकतम तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त होगा 7:17 पर और सूर्योदय कल होगा 5:23 पर।

0: उम्मीद है कि ये जो दिन शुरू हुआ है आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, मुस्कानें लेकर आए और सफलता लेकर आए। तो चलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। सुनीता भगत को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 10 बजने को है श्रोताओं, कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम आपके लिए समाचार रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या के बदलावों के लिए जांच की गठित समिति उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति

0: चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं श्रोताओं। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं, तो अब आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो
3: हेलो,
2: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
3: हेलो चंडीगढ़।

0: हेलो चंडीगढ़, कैसे हैं आप सब। इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आप सबकी अपनी सुनीता भगत। तो भाई, आप सब जानते ही हैं, इस प्रोग्राम में हम एक विषय चुना करते हैं और उसी विषय पर हम आपसे बातें किया करते हैं, ढेर सारी बातें। आप अपने विचार हम तक पहुँचाते हैं और हम भी अपनी बातें आपके साथ साझा करते हैं। तो हमारे श्रोता वैसे तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं हम अपने सभी उन सुनने वालों के लिए जो शायद अभी अभी जुड़े हों हमारे साथ। भाई, आज का विषय है दृढ़ निश्चय सफलता का मूल मंत्र है। अब भाई, ये तो आप जानते ही हैं कि जीवन में मंजिलें ना उन्हीं को मिलती हैं जो कुछ करने का ठान लेते हैं ना, जब तो फिर हार नहीं मानते। अब ये जीवन है, रास्ते तो कठिन होते ही हैं, परिस्थितियाँ भी हमारे लिए बहुत सारी विपरीत हो जाती हैं, लेकिन मन में अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें कि सफलता तो भाई हासिल करके ही रहेंगे, तो फिर दृढ़ निश्चय ही हमारी सफलता का मूल मंत्र बन जाता है। तो चलिए, हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे प्यारे श्रोता हैं, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से बात करते हैं और ले लेते हैं ये पहली टेलीफोन कॉल। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: सुनीता भगत जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी।
0: जी नमस्ते, अपना नाम बताएं।
1: मैं शीश कुमार सेक्टर 42 चंडीगढ़ से बोल रहा जी।
0: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल जी।
0: जी बड़ी अच्छी बात है, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मेरी एक लाइन है जी।
0: जी,
1: मन में हो लगन तो क्या धरती क्या गगन।
0: अरे वाह वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छा कहा।
1: हमारा मन स्ट्रोंग होना चाहिए और हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: जब भी हम पढ़ाई लिखाई में जाएं तो ये सोच कर जाए, आई कैन डू इट, मैं हर चीज कर सकता हूँ।
0: जी,
1: एक बार में नहीं, दो बार में, दस बार में समझ तो आएगा कुछ।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें हमेशा से यही कहते आए हैं, समझाते आए हैं, बार बार वो हर कदम पर हमें यही बात बताते हैं।
1: इंसान फेल होकर ही कुछ सीखता है, शुरू में फेल हो जाता है, बाद में वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है जी।
0: जी, और एक बार जब ठोकर लगती है उसके बाद जब हमें समझ आती है ना, तो उस बात का मूल्य भी कहीं अधिक होता है।
1: अब अपने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी भी फेल हो गए थे, वो साइंटिस्ट बने जी।
0: जी बिल्कुल सही कहा। देखिए ना, बहुत सारे दुनिया में ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, महान व्यक्तित्व, जो पहले बहुत असफल हुए लेकिन फिर सफलता के सीढ़ियां चढ़ते गए।
1: तो आपकी आवाज मेरे को बहुत कम आ रही है जी।
0: जी जी, अब आ रही है आपकी मेरी आवाज आपको?
1: अब थोड़ा सुधार हो गया है
0: जी। तो हम यही बात कर रहे थे,
1: कॉन्फिडेंस रखना होगा, हौसला बिल्कुल नहीं छोड़ना।
0: जी बहुत अच्छी बात आपने कही, हौसला रखना ही।
1: टाइम मैनेजमेंट रखे जी, हर काम रोज की रोज करे, काम ना छोड़े, आज का काम आज ही कर ले, कल पे ना छोड़े, ये बहुत सफलता का मूल

0: करता रहेगी।
1: ये तो बहुत बड़ा सफलता का मूल मंत्र है, है ना?
0: जी, आज का काम आज ही कर लो, जस्ट डू इट।
1: जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, बहुत ही सुंदर बातें कही हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, खासकर हमारे जो बच्चे हैं या युवा साथी हैं, आपकी इन बातों से जरूर प्रेरणा लेंगे। आपने हमें फोन किया, बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो हमारे श्रोता हमसे बात कर रहे थे, और एक और कॉल हम ले लेते हैं। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़, नमस्कार।
1: नमस्ते जी, नाम बताएं अपना।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: अच्छा जी, शिमला हिमाचल प्रदेश। अच्छा भाई, पहले तो ये बताएं, आज हमारे यहाँ पे में मौसम कुछ सुहावना हो ही गया है, बादल छाए हैं, हल्के हल्के हवाएं भी चल रही हैं, तो शिमला में कैसा है इस समय मौसम?
2: शिमला में भी थोड़े बादल हैं, थोड़ी हवा चल रही है, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और मौसम मतलब
1: सुहावना है, मौसम है। अच्छा, तो इस सुहावने से मौसम में बैठकर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: जी, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ चंडीगढ़, तो मैं

0: हैं। आज हमारे यहाँ पे भी मौसम कुछ सुहावना हो ही गया है, बादल छाए हैं, हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं। तो शिमला में कैसा है इस समय मौसम?
1: शिमला में भी थोड़े बादल हैं, थोड़ी हवा चल रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और मौसम मतलब
0: सुहावना है। मौसम है। अच्छा, तो इस सुहावने से मौसम में बैठकर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी जी जी, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ चंडीगढ़। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं चंडीगढ़ से 2021 से जुड़ा हूँ, तब से लेकर मैं आपके प्रोग्राम का नियमित होता हूँ।
0: चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप यूं ही जुड़े रहिए चंडीगढ़ केंद्र के साथ। आज का जो विषय है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जैसे कि हमें किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। अपना जैसे कि एक श्रोता ने कहा, अपना मन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देखो, बात पढ़ाई की नहीं है, बात में मतलब पढ़ाई हो चाहे कोई कोई दिक्कत हो, मतलब हर दिक्कत का सामना करना चाहिए।
0: हाँ, जीवन में किसी भी चीज के लिए अगर आप सफलता का प्रयास कर रहे हैं तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है।
1: सबसे बड़ी बात धैर्य रखना है। अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मैं कई बार आकाशवाणी के माध्यम से कई बार कह चुका हूँ, क्या बोलते प्रेरणा के लायक, कि मैं बचपन से 100% वाला जो है ब्लाइंड पर्सनल हूँ। तो मैं ब्लाइंड पर्सनल हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन मैंने कभी इस चुनौती को मैंने अपने जीवन में अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। लेकिन मैं इस चीज का मैं बचपन से लेकर अब तक जो है सामना कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि ये चीज है सभी श्रोताओं के जो है प्रेरणादायक है, क्योंकि हमें किस चीज से घबराना नहीं चाहिए, हमें डट के उसका सामना करना चाहिए। अगर हम कहते हैं ना कि अगर अंधेरे में अगर तीर चलाना हो तो फिर उसके लिए धैर्य रखना चाहिए।
0: देखिए, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को पहले तो हम सलाम करते हैं। आपने बिल्कुल भी इस चीज को अपने आड़े नहीं आने दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो कदम भी उठाया होगा जीवन में, जब जब भी आपको सफलता जरूर मिली होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सफलता मिल जाती है अगर हम प्रयास करेंगे तो सफलता मिल जाती है, अगर हम प्रयास नहीं करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपसे अभी शेयर बात की कि मैं 2021 से मैं चंडीगढ़ से जुड़ा, लेकिन मैं बचपन से आकाशवाणी सुनता गया और एक दिन मेरे दिमाग में एक बात आई
0: जी।
1: दिमाग में ये बात आई कि जो ये जो रेडियो में जो कॉलर आते हैं या ये कॉल करते हैं या क्या कंप्यूटर से कोई विज्ञापन चलाते हैं, तो मेरे दिमाग में गया कि मैं भी करके देखूं। तो मैंने किया, कम से कम एक घंटे के बाद फिर मैंने प्रयास किया। तो फिर मैं को पहली बार जब फर्स्ट टाइम किया तो फिर मैं अन्य चैनलों से जुड़ने लगा, हर केंद्र से जुड़ने लगा।
0: जी जी, आपकी बातों से हमें यही लगा कि सफलता जो है वो सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, लगातार प्रयास करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और मजबूत इरादा रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम धैर्य रखेंगे तो हम कोई चीज जो है सफलता हमें मिल सकती
0: जी। आपने हमें कॉल किया, आपका बेहद धन्यवाद। अच्छा जी, तो कॉलर तो हमारे साथ बहुत जुड़ रहे हैं, अगली कॉल लेते हैं हम, लेकिन उससे पहले ये एक संदेश है आपके लिए।

0: विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से हमारे श्रोता सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, और आज का हमारा विषय है दृढ़ निश्चय ही सफलता का मूल मंत्र है। हेलो चंडीगढ़।
1: हाँ मैडम, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, नाम बताएं अपना।
1: मैडम मैं प्रदीप बोल रहा हूँ शिमला से।
0: अच्छा जी प्रदीप जी, कैसे हैं आप?
1: मैडम बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हैं?
0: जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, धन्यवाद आपका। बताएं क्या कहना चाहेंगे।
1: हाँ जैसे अभी भी ये मुझसे पहले भी एक कॉलर बोल रहे थे ना कि जैसे मतलब हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और हिम्मत नहीं हमें हारनी चाहिए।
0: जी जी।
1: और जितना हम मतलब वो स्ट्रगल करेंगे हमारे को एक ना एक दिन जो है सफलता जरूर मिलेगी।
0: जी बिल्कुल।
1: और हमें निराश नहीं होना चाहिए कि एक दो बार अगर हमने कोशिश करी और फिर उसमें हम सफल नहीं हुए फिर हम छोड़ दे उस काम को करना ना।
0: हाँ,
1: तो ये हमें लगातार हमें जो है ये प्रयास करते रहना चाहिए मैडम।
0: प्रयास लगातार ही हमें करते रहना चाहिए, हिम्मत हमें बिल्कुल छोड़नी नहीं है, क्योंकि हिम्मत का दामन अगर हम पकड़े रखेंगे ना तो तभी हम सफल हो सकते हैं। और हिम्मत तभी हो सकती है जब हम ये दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें सफलता के रास्ते पर जाना ही जाना है।

0: हाँ जी, हाँ
1: ये
0: जी,
1: बात
0: बिल्कुल
1: आपने
0: सही,
1: बिल्कुल सही कही है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: तो मेन बात जो है ना वो यही है कि इंसान को हिम्मत से ही काम लेना
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बिल्कुल
1: हिम्मत
0: बिल्कुल,
1: नहीं हारेंगे तो ही दृढ़ निश्चय कर पाएंगे और तो ही हम सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ते
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जाएंगे।
0: बेशक उसमें मतलब समय लग जाए, लेकिन ये है कि लास्ट में हमें मतलब वो सफलता जरूर मिलती है। जी
1: सही कहा आपने। आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक मैडम, आपका भी थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू।

0: जी इंसान अगर हिम्मत करे तो भाई सब कुछ संभव हो सकता है। अब हिम्मत ही अगर हम हार दें, अपने मन को ही हम मना ना पाए, हम दृढ़ निश्चय ही ना कर पाए, तो फिर जीवन जीना थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। फिर तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना श्रोताओं। चलिए ये तो था मेरा मानना, श्रोताओं का क्या मानना है जो इस समय टेलीफोन लाइन पर हैं, उन्हीं से बात करते हैं। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़
0: जी, नमस्ते जी, नाम बताएं अपना।
1: मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं जीरकपुर मोहाले से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी बताइए
1: जी, अभी आपका ये प्रोग्राम चल रहा है जी कि अगर
0: हेलो
1: हेलो
0: जी जी कहिए, हम सुन रहे हैं जी। उनका कॉल कट गया है तो अगला कॉल ले लेते हैं। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो, हाँ दीदी नमस्ते।
0: जी नमस्ते,
2: शिवा तिवारी सत्यन्द्र पंचकूला से, होटल से।
0: शिवा तिवारी,
2: आपका आवाज दीदी तो नहीं आता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो काम करे वो अपना विश्वास के ऊपर करे तो काम सुबह होता ही है। कोई भी आदमी कितना भी ये हिम्मत हारना चाहिए, हिम्मत हारने से कोई भी काम नहीं होता है
0: जी। इसीलिए हमने इतना बढ़िया सा गीत सुनाया
2: है, हमारा आवाज जाता है तो आपको मैं दीदी बोल रहा हूँ
0: जी। जी आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है।
2: प्रयास करने से सब

0: सफल सुबह होता है संतान पूरा कीजिए।
1: सही कहा आपने, हिम्मत की कमी पड़ती है साथ ही प्रयास भी करना पड़ता है।
0: आवाज आता तो है नहीं, लेकिन लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ ये कि पूरा वो है दीजिए कि हर एक प्रयास से कोई भी काम ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़े होगा, सफल सुबह होता है।
1: जी जी,
0: खाली हिम्मत हारे ना सोचे कि ये होना है करना है तो वो होती रहेगी।
1: देखिए ना, तय तो करना पड़ता है ना, अगर हम तय कर लें कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है।
0: बाकी बात हमारा तो आपसे बात जाता ही होगा।
1: जी जी, फोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हेलो चिंदी भाई, हेलो चंडीगढ़, हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, आप अपने रेडियो की आवाज कम कर लें या अपने से थोड़ा दूर कर लें।
2: जी जी
1: जी, कौन बात कर रही हैं और कहां से बोल रहे हैं आप?
2: जी बहन जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
2: मांगेराम सैनी बोल रहे हैं जी, जांगले से।
1: जांगले,
2: जांगला जी, जांगला डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में जी।
1: अच्छा जी, जांगला कुरुक्षेत्र, अच्छा हरियाणा।
2: हाँ जी, हाँ जी
1: जी जी, कैसे हैं भाई आप?
2: बहुत बढ़िया मैडम जी, आप सुनाओ।
1: जी हम बिल्कुल बढ़िया हैं, देखिए बात कर रहे हैं हम आपसे। अच्छा जी, तो प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हमारा?
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: और विषय भी सुन लिया होगा आपने?
2: विषय भी सुन लिया जी, विषय आज कई दिन में लगा जी, मेरा तो नंबर बहन जी, मैं तो तंग हो गया कई दिन करता करता।
1: अच्छा जी, तो क्या विचार है आपके?
2: विचार तो यही है जी, आदमी नहीं मंत्री हारनी चाहिए, सारे काम हो जाए, आदमी से बड़ा कोई काम नहीं है जी।
1: देखिए
2: आदमी कोशिश करेगा जिस काम के भी वो काम हो जाएगा जी, कभी भी।
1: बिल्कुल जी, अगर हम तय कर लेना कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, तब मुश्किलें जो है ना वो आसान होने लगती हैं।
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: है ना। तो क्या है कि इरादे जो है हमें वही मजबूत रखने हैं अपने।
2: हाँ जी,
1: तो आप भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं?
2: ऐसा ही करा जी, हम भी कोशिश करा जी, काम कराने की, रायदा करने की, जो काम हमारा पूरा होना चाहिए वो चाहना जी, पर उसकी कोशिश रखेंगे, काम होना चाहिए जी, रायदा रखा
1: जी। सबसे बड़ी बात ये है कि कोशिश करते रहना है, प्रयास करते रहना है,
2: हिम्मत रखा जी।
1: अच्छा, तो घर में बच्चे भी तो होंगे आपके, उन्हें भी सिखाते हैं आप ये बात?
2: बच्चे बड़े रहे, बच्चे तो बैर के बहन जी।
1: अच्छा जी, तो लेकिन देखिए ना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं परिवार के, तो वो तो समझाते ही रहते हैं ना ताउम्र तक अपने बच्चों को, तो उनसे आप ये बात किया करते हैं?
2: अगर बहन जी, बहन जी एक मिनट, ये अपने रमेश पूर जी थे, उनसे बात हुई कई दिन से जी।
1: अच्छा जी, कोई बात नहीं जी, हम सब बारी बारी आते हैं आपसे बात करते हैं, हमारे साथी भी किसी न किसी रोज जरूर आएंगे आपसे बात करेंगे।
2: मेरी बात हुई जी पहले एक दो बार रमेश पूर जी से, बबीता बहन जी से
1: जी,
2: और आज तो मेरे को पता नहीं कौन सी बहन जी बोल रही
1: है। मैं सुनीता बोल रही हूँ जी, सुनीता भगत।
2: अच्छा जी, ठीक है बहन जी, ठीक।
1: चलिए जी, आपने समय निकाला, हमें कॉल किया, हमसे बात की, आपकी विचार सुनकर अच्छा लगा, आपका बेहद शुक्रिया।
2: ठीक है मैम, थैंक यू
1: जी। हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो
1: जी जी,
3: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग,
3: मैं सूरज बात कर रहा हूँ, तहसील ठोकी शिमला हिमाचल प्रदेश से।
1: जी सूरज जी, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया मैम, आप बताओ।
1: जी हम बिल्कुल अच्छे हैं, आप बताइए, आपने अपने जीवन में दृढ़ संकल्प किए हैं और फिर सफलता हासिल की है?
3: मैम ऐसा तो मैम अभी तक तो मेरे साथ लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग जैसे ये सोचते हैं कि लाइक मैं मतलब मैं अपने भाई का एग्जांपल लेता हूँ। अब जैसे वो अभी बीटेक करके हटा है, तो अब वो उसने अपना नया बिजनेस चालू किया है
1: जी,
3: करने की सोच रहा है वो। तो मैम उसको आसपास से लाइक इस तरह की लाइक सुनने को मिल रहा है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, घाटा हो जाएगा।
1: अच्छा जी।
3: Yes, ma'am.
1: लेकिन आपके भाई जो हैं उनके मन में तो दृढ़ निश्चय है ना?
3: जी ma'am.
1: वो तो चाहते हैं ना कि मन में दृढ़ निश्चय कायम रखें और हिम्मत ना हारें और सफलता की ओर बढ़ें।
3: जी ma'am, वो लगा हुआ है।
1: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, वो तो लगे हुए हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से अपने सभी श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि घर में जो भी कोई किसी अच्छे काम में लगे हैं, दृढ़ संकल्प के साथ वो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमेशा उनको प्रोत्साहन ही देना चाहिए।
3: सबसे बड़ी बात है कि किसी को मतलब ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई तू तो ऐसा है, तेरे को कुछ भी नहीं आता।
1: जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए,
3: नहीं बोलना चाहिए।
1: अक्सर हमारे घर में ऐसा होता है। जी जी नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो जो इंसान अपने कार्य में लगा हुआ है, हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ डटा हुआ है, उसका हौसला टूट जाएगा और फिर वो जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाएगा।
3: बिल्कुल,
1: आपने ये एक अच्छा मुद्दा उठाया है, बहुत अच्छी बात कही है। तो मुझे बोली उम्मीद है कि जो लोग सुन रहे हैं हमें, वो जरूरी।

0: ओर ध्यान देंगे। शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
1: ओके मैम।
0: हेलो चंडीगढ़। हेलो हेलो हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो
0: जी जी, नाम बताएं अपना।
1: जी मैं योगेश बात कर रहा हूँ, मंडी हिमाचल प्रदेश से।
0: अच्छा जी, मंडी पहुँच गए हम। जी योगेश जी, क्या हाल है आपके?
1: जी बहुत बढ़िया है, और मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था आपसे बात करने की, और अब कॉल लग गई है तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: नहीं कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ हमें 20-22 मिनट ही हुआ है ये प्रोग्राम करते हुए। चलिए अच्छा है, आपका कॉल लग गया है तो खुशी हुई, हमें भी, आपको तो हो ही रही है।
1: जी
0: तो बताएं आपका क्या मानना है इस विषय पर?
1: जी ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, क्योंकि दृढ़ निश्चय ही सफलता के द्वार खोलता है।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: इसके हमारे पास इतिहास में बहुत से उदाहरण मिलते हैं। जो सबसे प्रासंगिक उदाहरण है, जो मैं समझता हूँ कि विज्ञान के क्षेत्र में थॉमस अल्वा एडिसन की हम बात करते हैं, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। न जाने उन्हें कितनी बार असफलता का सामना करना पड़ा था।
0: कितने ही हमारे वैज्ञानिक हैं, कितने ही ऐसे महान लोग हैं इस दुनिया में, पूरी दुनिया में हुए हैं, जिन्होंने अनथक प्रयास किया है, है ना, हौसला नहीं हारा है, और कुछ ना कुछ ऐसा करके गए हैं वो इस जिंदगी में कि देखिए आज तक भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं
1: जी,
0: है ना। तो कहते हैं ना कि जीवन में मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जो ठान लेते हैं कि भाई हार नहीं मानेंगे
1: जी।
0: तो इसीलिए तो कहा जाता है ना कि दृढ़ निश्चय जो है वो सफलता का मूल मंत्र है। दृढ़ निश्चय अगर हम कर लें तो सफलता फिर आएगी ही हमारे पास।
1: जी सफलता को आने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि कबीर दास ने भी कहा है कि रस्सी आवत जात तहसील पर पड़त निशान। जब हाँ उसी तरह से अगर हम किसी भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें और ठान ले कि हमें इसे प्राप्त करना ही है, तो हम इसे प्राप्त करके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना भी समय लग जाए
0: कितनी ही मेहनत करनी पड़े।
1: तो धीरज का होना बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि सफलता तो मेहनत करने वालों को जरूर मिलती है। उनके नसीब में मेहनत नहीं होती, बल्कि वो अपने नसीब खुद बनाते हैं अपनी मेहनत से।
0: जी बहुत ही बढ़िया बात कही आपने कि नसीब जो है ना वो हमारा हम खुद ही बनाते हैं
1: जी,
0: है ना। ठीक है जी, आपके विचार बहुत अच्छे लगे, फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा तो पहले एक संदेश सुन लें फिर अगला कॉल उठाते हैं।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: दृढ़ निश्चय सफलता का मूल मंत्र है। जी जी, यही है हमारा आज का विषय। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और इसी विषय पर हम अपने श्रोताओं से बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, तो चलिए फिर बात करते हैं एक अन्य श्रोता से। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
1: जी गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही है?
2: डोगरा बोल रही मैम, अभी तो ऑन द वे हूँ, पार्लर से चल रही हूँ।
1: अच्छा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
2: मैं वैसे हिमाचल से हूँ, हमीरपुर से मैम। अभी तो गाड़ी में हो ना, तो रेडियो लगा हुआ था इसलिए बात करने लग पड़ी।
1: अच्छा, आप हमीरपुर की हैं, तो अमिता डोगरा।
2: जी हमीरपुर से हूँ।
1: अच्छा जी, तो ये बताएं कहाँ जा रही हैं आप?
2: अपने घर जा रही मैडम, जैसे बेटा रहता ना अम्बाला में, अभी चंडीगढ़ अपने घर।
1: जी जी, तो अम्बाला से हमीरपुर जा रही हैं आप?
2: हाँ जी हाँ जी।
1: और आप ये बस में सुन रही हैं हमें?
2: नहीं मैम, अपनी गाड़ी से।
1: अपनी गाड़ी में, अरे वाह। देखिए ना, हम बार बार अपने श्रोताओं से यही कहते रहे हैं कि आकाशवाणी जो है 24 घंटे आपके साथ है। आप रेडियो कहीं भी सुन सकते हैं, आप खेत में सुनिए, रसोई में सुनिए, आप गाड़ी में सुनिए। जी जी,
2: सुबह लग जाता है FM 107.2 फेवरेट, पहले ही लग जाता है।
1: आप देखिए ना, 8 जून को आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे करने वाली है, तो आप जैसे श्रोताओं से जब मुलाकात होती है हमारी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम आपके साथ साथ चलते रहे हैं हमेशा।
2: बिल्कुल मैम, मतलब हमारी दादी माँ ही है ये।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
2: साथ बड़े ही हुई मैं।
1: जी अच्छा जी, तो आज का विषय तो आपने सुन ही लिया होगा हमारा,
2: दृढ़ निश्चय मैम, है ना, कुछ भी करने के लिए।
1: जी बिल्कुल, सफलता का मन

0: रहे दृढ़ निश्चय।
1: हाँ जी, मैं कहूँगी 3 डेज।
0: ओहो, हाँ ना जी,
1: लाइफ में कई होते, कई 3 आवर्स बोलते हैं, ऐसे ऐसे चीज है, तो 3 डेज की मैं बात करूंगी। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड लास्ट में डिवोशन।
0: ओके, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन, बड़ी सुंदर बात कही आपने।
1: हाँ जी, लिटरेचर की टीचर।
0: अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात हो रही थी इनके साथ और ये कॉल बीच में कट गया है। चलिए फिर से ये कोशिश करेंगे शायद, तब तक हम अगला कॉल ले लेते हैं। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्ते, रेडियो की आवाज कम कर लीजिए।
2: नहीं, बंद कर दिया, बंद कर दिया।
0: अच्छा जी, पहले तो आप अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं पटियाला से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा अब्दुल रहमान भाई, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया है।
0: अच्छा जी, बढ़िया ही होना चाहिए। बताएं फिर, क्या सोचते हैं आप इस बारे में
2: जी?
0: आपका क्या कहना है इस बारे?
2: हिम्मत हारना नहीं चाहिए बंदे को
0: जी, बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए।
2: आप कोशिश करते रहना चाहिए।
0: देखिए ना,
2: आप उनको देख लीजिए, अमिताभ बच्चन जी को।
0: हाँ,
2: शुरू में कितने फेल थे वो, 17 फिल्म में लगातार पिटिंग, लेकिन आखिर में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी
0: जी। आप तो बड़ा सोच समझ के उदाहरण चुन के लाए हैं जी। अच्छा, सही बात है।
2: आज हमारे हिंदुस्तान के नंबर वन महानायक हैं
0: जी। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हम चाहे अभिनेताओं की बात करें, चाहे नेताओं की बात करें, अपने वैज्ञानिकों की बात करें, अपने विज्ञान के क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी बात करें, हम अपने साइंटिस्ट की बात करें, है ना, अपने खिलाड़ियों की बात करें, तो जिस जिसने भी हिम्मत नहीं हारी है ना, तो वो तो सफलता के शिखर पर पहुंचा है।
2: आपके पहले उन्होंने बात करी थी कलाम साहब हार गए, फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
0: जी जी जी, बिल्कुल। और ऐसा भी तो होता है ना कभी कभी कि किसी समय हमें लगता है, जब हम थोड़ी सी हिम्मत हारने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अकेले पड़ गए हैं, कदम रुक से गए हैं, लेकिन उस समय भी अगर हम अपना मनोबल ऊंचा रखेंगे, जिसे हम एक विल पावर कहते हैं अपना, है ना, तो फिर चाहे हम अकेले भी हों, आगे बढ़ते रहें, तो सफलता को हम जरूर चूम सकते हैं। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा।
2: आपके हम प्रोग्राम सुनते बहुत ही बढ़िया लगते हैं।
0: बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह से आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिए। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।
2: नमस्कार
0: जी। तो श्रोताओं से बातचीत चल रही है। आज का हमारा विषय है दृढ़ निश्चय, सफलता का मूल मंत्र। एक कॉल और ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो चंडीगढ़ जी। तो जब तक हमारी कॉल मिलती है, अपने श्रोताओं को एक हम गीत सुनवा देते हैं अच्छा सा।

0: चल चला चल।
1: जी, इरादे अगर मजबूत हों तो राहें तो खुद ही बन जाती हैं, और जो कोशिश करना नहीं छोड़ते ना, तो उनके लिए सफलता हमेशा अपने द्वार खुले रखती है। कहते भी हैं ना कि सपने तो वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने का संकल्प जो है ना वो आपके दिल में बसता रहे। तो बस इसीलिए हमने आज चुना है आपके लिए विषय, दृढ़ निश्चय सफलता का मूल मंत्र है। अब ले लेते हैं हम इस प्रोग्राम की अगली कॉल। देखते हैं भाई कौन है कॉलर हमारे इस समय जो हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो चंडीगढ़। हेलो चंडीगढ़। हेलो
2: हेलो
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: दीदी नमस्ते।
1: जी नमस्ते, कहाँ खो जाते हैं आप फोन करके?
2: बस दीदी, वो एक बार लगाया तो बात हुआ नहीं था, अभी बात हम कोशिश किया कि चलो दीदी से बात करना है।
1: जी जी, कहीं कहीं क्या कहना चाहते हैं
2: दीदी? ऐसा है कि आज तक वो काफी, आप तुम्हें बताओ अभी, मैं तुम्हें उसमें क्या आज तुम्हें बता दो हमको दीदी।
1: अच्छा, आपको मैं फिर से विषय बताऊं?
2: हाँ,
1: चलिए, आज का विषय है, अच्छा इतनी जल्दी भूल गए आप। अच्छा कोई बात नहीं, हम फिर से बता देते हैं। हमारा आज का विषय है, दृढ़ निश्चय ही सफलता का मूल मंत्र है।
2: अच्छा अच्छा, दीदी देखो ऐसा है, मैं तो अपना नाम तो बताया नहीं, शिवा तिवारी सेक्टर 9 पंचकुला।
1: जी शिवा तिवारी जी, आपने अपना नाम हमें बताया था, चलिए अच्छा किया आपने फिर से बता दिया। अब इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप, ये बताएं।
2: इस विषय पर दीदी ऐसा है कि हर एक आदमी को बहुत आदमी किया तो पहले बोलते थे कि ये काम होगा ही नहीं, हिम्मत आते हैं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं आना चाहिए। ऐसा जो नहीं होने वाला उसकी कोशिश करे कि राइट में होगा क्यों नहीं, ऐसा जो उसमें सोच लो दीदी। एक में वो है, एक में लड़का पहले था जो स्कूल में पढ़ते थे, तो वो तुम्हें क्या कि उसको कुछ ज्यादा नहीं था, तो वो सबके पीछे बैठता था। तो उसको बाद में क्या हुआ कि उसको आजा भगवान की कृपा हुआ कि वो आगे जो तुम्हें स्कूल में बैठा, तो उसको सब बच्चे पीछे के

0: ऐसा पढ़ने में निकल गया क्योंकि एक बार वो वहाँ गांव में कुआ पे बैठा उस रस्सी से जो पानी भरे तो वो निशान पड़ गया, ईंट में कट गया, तो वो थोड़ा सोचा कि दिमाग लगाओ तो कैसे नहीं तो पढ़ाई होगा, दिमाग लगाया तो पढ़ने में सबसे आगे था, सबसे वो जो बच्चे का मॉनिटर होते हैं वैसा बढ़ गया वो।
1: हाँ तो मतलब बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी ना, उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि अगल बगल के जो बच्चे हैं वो उसे क्या कह रहे हैं या तंग कर रहे हैं या प्रोत्साहन नहीं दे रहे, उसने हिम्मत नहीं हारी और वो सबसे आगे निकल गया।
0: वो तो हिम्मत है, उसने सोचा कि जब ये ईद तुम्हें कट जाता है तो आज दिमाग बल जो लगावे है तो फिर क्यों नहीं तो सफलता होगा, तो हम कि वो सब बच्चे से आगे निकल गया, मॉनिटर उसको मास्टर ने बना दिया, बहुत आगे पढ़ने में वो सफलता हुआ। बहुत
1: अच्छा जी, बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने दिया है, और जो बच्चे शायद हमें कुछ सुन रहे हों या हमारे युवा साथी, तो वो ये बात सुन के ना जरूर इसकी तरफ गौर करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे।
0: दीदी ये एक बार कहा नहीं है, एक बार हमारे साथ बच्चा पढ़ता था। हाँ ये तुम्हें ऐसा वो निकला आगे कि उसको आज वो वहाँ लखनऊ में जो है सचिवालय में जो है वो नौकरी पा गया, बहुत अच्छा।
1: जी तो कहने का मतलब ये है कि दृढ़ निश्चय बच्चे ने किया और सफलता जो है वो उसके कदम चूमने लगी, है ना?
0: सफलता।
1: चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, फोन करने के लिए धन्यवाद। हेलो चंडीगढ़, हेलो,
2: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं अपना।
2: मैं किरण बात कर रही हूँ।
1: जी किरण, आप कहाँ से बोल रही हैं?
2: मैं कुफरी से बात कर रही हूँ।
1: कहाँ से जी?
2: शिमला।
1: शिमला, अच्छा जी। किरण आपसे हम कहेंगे आप थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करें।
2: जी मैम।
1: जी जी, तो क्या हाल चाल है आपकी और फिर शिमला की?
2: बढ़िया है, धूप बहुत है।
1: जी धूप है लेकिन उसमें ठंडक भी है थोड़ी थोड़ी आज, है ना?
2: जी मैम।
1: अच्छा जी, तो धूप में बैठकर हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं आप?
2: नो मैम, छाँव में।
1: अच्छा जी, चलिए आप भी जरूर कुछ ना कुछ कहना चाहती होंगी इस विषय पर।
2: जी मैम
1: बताइए।
2: मैम मेरे साथ बचपन में एक बात हुई है, मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स कहते तुम्हें इतने मार्क्स ले आने हैं तो ले आने हैं,
1: मतलब इतने नंबर लाने हैं आपको, इतने अंक लाने हैं।
2: जी मैम।
1: जी जी,
2: तो मैम मतलब वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा। तो मतलब आज एक पीछे मतलब नंबर हो ही जाता है, कट एक दो नंबर कट हो जाता है, घट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मतलब जिस वक्त हम पेरेंट्स जब मतलब जब नंबर बढ़ जाते थे सब खुशी हो जाते थे, मतलब कम मार्क्स कम आते थे तो मतलब थोड़े नाराज हो जाते थे, नर्वस हो जाते थे।
1: हाँ कभी कभी ऐसा होता है, माता पिता थोड़े से उदास होके फिर नाराज हो जाते हैं। जी जी अच्छा, तो लेकिन आपने तो हिम्मत नहीं हारी ना?
2: लेकिन हमने उनकी हिम्मत पे रखा है काबू।
1: तो आपने पढ़ाई की अच्छे से?
2: जी मैम, बट आज मैं सरकारी जॉब में।
1: जी अच्छा, देखिए ना फिर आपने तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे तो सफल होना ही है ना? चलिए हमें अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: सरकारी नौकरी के साथ साथ मेरे पास तीन गाड़ियां
1: हैं। देखिए जी, तो इसका फिर मतलब यही हुआ ना जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारी, हौसला अपना टूटने नहीं दिया, आपने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे सफल होना ही है और आपने सफल होके दिखाया। हमें बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, हमारे श्रोताओं को भी अच्छा जरूर लगा होगा, आपने ये बात हमारे साथ साझा की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो चंडीगढ़, हमारे कई श्रोता ऐसे हैं जो टेलीफोन मिलाते हैं और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो हमारे सभी श्रोताओं से हम एक बार ये विनम्र निवेदन करेंगे कि आप जब भी हमें टेलीफोन मिलाते हैं ना तो हमसे बात जरूर करें। चलिए अगला कॉल ले लेते हैं। हेलो चंडीगढ़, हेलो हेलो हेलो।

अच्छा जी, तो हमारे श्रोता यहाँ पर भी थोड़े से व्यस्त हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, हम अपने दूसरे श्रोताओं से बात कर लेते हैं। बात आज हम कर रहे हैं दृढ़ निश्चय की, बात हम कर रहे हैं कि सफलता का मूल मंत्र क्या है, और वो यही है कि हिम्मत इंसान को नहीं हारनी है, दृढ़ निश्चय रखना है। कभी ना कभी जीवन में सफलता जो है वो आपके कदम जरूर चूमेंगी। हेलो चंडीगढ़, हेलो चंडीगढ़ जी। कभी कभी ना ये जो मशीनें होती हैं ये भी हमारे साथ खेल खेलती हैं। हाँ भाई, मौका मिलता है इनको भी कभी कभी ऐसा करने का, तो कोई बात नहीं। हमारे श्रोता लगातार कोशिश कर रहे हैं हमसे बात करने की, हम तक पहुंचने की, हम भी उनके साथ जुड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। भाई हम भी दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं ना कि हम अपने श्रोताओं से बात करने में सफलता तो ज़रूर हासिल करेंगे। हमारे लिए भी आज सफलता का मूल मंत्र बस दृढ़ निश्चय ही है कि हम जमे रहेंगे, डटे रहेंगे और अपने श्रोताओं से बात करते रहेंगे। हेलो चंडीगढ़, हेलो चंडीगढ़, हेलो। अच्छा जी, तो जब तक हमारी किसी श्रोता से बात होती है, ऐसा करते हैं एक गीत सुन लेते हैं।

0: हेलो चंडीगढ़,
1: सत श्री अकाल जी।
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं बंसी लाल जी।
0: अच्छा बंसी लाल जी, कहाँ से?
1: जमोली जिला अम्बाला जी।
0: अम्बाला से बात कर रहे हैं आप? अच्छा नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया जी, 90 साल हो गए जी आकाशवाणी को मुबारकें।
0: जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे साथ साथ आप हमारे श्रोताओं को भी बहुत मुबारक है। आपके कारण ही हम आगे बढ़े हैं ना।

0: हाँ जी
1: जी जी जी कहें
0: है जी
1: जी बताएं क्या कहना चाहेंगे।
0: मैं कहना क्या चाहेंगे, गर्मी है गर्मी से बचो। हाँ बस गर्मी, अब तो गर्मी तो गर्मी में होएगी।
1: आज तो इतनी गर्मी नहीं है, आज तो मौसम थोड़ा अच्छा है, गर्मी नहीं है।
0: मौसम में 4% नीचे गिर गया।
1: जी जी, लेकिन आज का हमारा जो विषय है ना वो गर्मी से थोड़ा सा हटकर है। हमारा आज का विषय है दृढ़ निश्चय सफलता का मूल मंत्र है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप?
0: बोलिए दोबारा जी।
1: दृढ़ निश्चय यानी कि अगर हम ठान लें कि हमें सफल होना ही है,
0: फिर तो कामयाब हो जाएंगे जी।
1: हाँ कामयाब हो जाएंगे ना,
0: मन में है विश्वास जी, हम होंगे कामयाब।
1: हम होंगे कामयाब जी जी,
0: एक दिन होंगे। हम पहाड़ को देख के डरना नहीं है।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: हम कैसे चढ़ेंगे? लड़कियाँ भी चढ़ रही पहाड़ पे तो
1: जी, बिल्कुल लड़कियाँ भी चढ़ रही हैं। आज से ही जमाने से चढ़ रही हैं पहाड़ों पर। जी जी,
0: बेल्ट बन गई जहाज की।
1: अब देखिए ये आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है पहाड़ों वाला। अब देखिए कितने लंबे ऊंचे पहाड़ होते हैं और एकदम नीचे से जब शुरुआत करते हैं ना जो पर्वतारोही होते हैं जो ऊपर चढ़ने वाले, अगर वो नीचे से ही देखकर हार मान जाएं डर जाएं फिर तो वो चढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो यही पर उनका जो दृढ़ निश्चय है वो काम आता है।
0: बड़ी खूबसूरत बात कही आपने, हम होंगे कामयाब।
1: जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल किया, हमसे बात की।
0: थैंक यू जी।
1: हेलो चंडीगढ़, हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, नाम बताएं अपना।
2: मैं निर्मला बोल रही हूँ अम्बाला से।
1: जी निर्मला जी, कैसी हैं आप?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो?
1: जी बिल्कुल बढ़िया हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। आज का विषय तो आपने सुना होगा
2: मैम।
1: चलिए जी, लग तो गया, अभी तो वक्त है हमारे प्रोग्राम को।
2: हाँ इसीलिए मैं लगी रही। ये जो भी गाना आ रहा था ना, हो हिमालय से ऊंचा है मेरा हौसला,
1: जी जी,
2: ये गाना मुझे बहुत पसंद है। इस गाने ने मुझे मजबूर कर दिया आपको फोन करने के लिए।
1: अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया,
2: बहुत धन्यवाद आपका ये गाना सुनाने के लिए।
1: जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका।
2: हाँ जी
1: जी, कहें क्या कहना चाहेंगी इस विषय पर?
2: बस इस विषय पे यही है मैम, आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा। वो कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान।
1: जी बिल्कुल, जैसे आप कर्म करेंगे तो आपके कर्म करने में दृढ़ निश्चय का होना भी बहुत जरूरी है।
2: बहुत जरूरी है, तो फिर वैसा ही हमें फल मिलेगा।
1: जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ये छोटी सी बात आपने कही है, लेकिन आपकी इस छोटी सी बात में ही ना इस पूरा सार आ गया इस बात का।
2: हाँ जी हाँ जी,
1: कि अच्छे कर्म करेंगे, अगर दृढ़ निश्चय लेकर कर्म करेंगे तो फिर सफलता
2: कहीं नहीं। मैं कपड़े धो रही थी मैम, ये गाना सुना रहा, मैं मजबूर हो गई आपको दोबारा फोन करने के लिए। पहले ट्राई कर रही थी, नहीं लगा।
1: जी जी जी,
2: लेकिन अब लग गया।
1: चलिए बहुत शुक्रिया आपका,
2: ये गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: जी मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए।
2: थैंक यू मैम।
1: हेलो चंडीगढ़,
3: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए।
3: मैं ममता बात कर रही हूँ मैम।
1: अच्छा ममता जी, कहाँ से बोल रही हैं आप, पहले ये तो बताएं।
3: मैम कुफरी से बात कर रही हूँ, शिमला।
1: शिमला भाई, शिमला से हमें बहुत फोन आते हैं, हमारे हिमाचल के जो श्रोता हैं वो जुड़े रहते हैं हमारे साथ, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा तो बताएं, सुन रही हैं प्रोग्राम?
3: जी मैम, बहुत अच्छी तरह से।
1: और बहुत सारे लोगों के विचार भी आपने सुने होंगे।
3: जी मैम।
1: तो आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचती हैं इस बारे में?
3: मैम मैं तो यही कहना चाहूंगी, जैसी करनी वैसी भरनी।
1: यानी अगर आप हिम्मत हार देंगे, हौसला नहीं रखेंगे, वही जैसी करनी वैसी भरनी, तो फिर तो सफलता नहीं आएगी ना आपके पास।
3: जी मैम, और मेरा कहने का मतलब ये है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा मैम।
1: हाँ ये बात भी अपनी सही कही है, ऐसा ही होता है। अब ये जो आपने कहा जैसा हम बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे, तो इसका मतलब भी यही है कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, है ना। दृढ़ निश्चय रखेंगे मन में कि नहीं मेहनत करनी है, सफलता लेनी है, तो ही सफलता आएगी आपके पास।
3: जी मैम, जैसे कि हम के पहला भी कहा है कि जैसे हम चढ़ाई करने के लिए नीचे से देखेंगे तो हमें करना चाहिए कि हम ऊपर चढ़ते रहेंगे।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, आपसे बात करके अच्छा लगा, फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। हेलो चंडीगढ़,
4: हेलो चंडीगढ़
1: जी, रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए।
4: हेलो,
1: रेडियो अपने से थोड़ा दूर रखिए।

0: सभी श्रोताओं से ही निवेदन है।
1: मैं गाड़ी में हूँ।
0: जी जी,
1: हेलो,
0: बताएं अपना नाम बताएं।
1: मैं प्रदीप कुमार सिंह बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, सुन रहे हैं आप हमारा प्रोग्राम?
1: हाँ, डेली मैं तो जब चलता अपना निकलता हूँ अपने टूर पे।
0: अच्छा,
1: तो मेरा चलता है 107.2 है, इसके अलावा कुछ सुनता ही नहीं हूँ।
0: बेहद शुक्रिया आपका, समय हमारे पास थोड़ा कम है, तो बताएं आप आज के विषय में क्या कहना चाहेंगे?
1: बस आज का विषय मैडम यह है कि जो आपने बोला है ना कि हार नहीं माननी चाहिए, आदमी ने कितना भी मतलब विपरीत परिस्थितियां आ जाए और उसको जो अपना मनोबल है वो कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: मनोबल नहीं तोड़ना, हार के आगे ही जीत है।
0: जी बिल्कुल,
1: समय का जो चक्र हुई ऐसा घूमता है कि सुख और दुख दोनों आपको मिलने इस जीवन के अंदर।
0: जी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
1: जो उन दुखों को पार कर लेगा वो सुख का अनुभव अपने आप पालेगा।
0: बहुत खूबसूरत बात कही आपने,
1: वो आपके लौट के एक बार आपके पास जरूर जरूर आएंगे।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, फोन करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।

0: जी, तो हमारे सारे श्रोता, हमारे सारे सुनने वाले अच्छे से ये बात समझ गए हैं कि सफलता पाने के लिए सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता भाई, उन्हें पूरा करने का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। और जब हम अपने मन में ये ठान लेते हैं कि चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, हम पीछे नहीं हटेंगे और दृढ़ निश्चय रखेंगे, तब सफलता हमारे कदम चूमती है। तो आज का जो हमारा विषय था, दृढ़ निश्चय सफलता का मूल मंत्र, इस विषय पर आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप सबने हमें फोन किया, हमसे बात की, बहुत धन्यवाद आप सबका। और अब इस कार्यक्रम का समय जो है यहीं पर समाप्त हो रहा है। सुनीता भगत को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: हेलो हेलो, कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़, हेलो चंडीगढ़।

श्रोताओं, ये प्रोग्राम आपने विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से सुना। इस समय 11 बजे हैं, तो आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं राखी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। हमें बहुत खुशी होती है जब आप फोन व पत्र के माध्यम से हमें सुझाव भेजते हैं और हमें उत्साहित करते हैं। हमें आपके सवालों व सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो श्रोताओ, आज फिर हम आपके लिए एक और नई कहानी को साथ लेकर आए हैं। हमें आशा है आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आएगी। आज की कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ, 8527449955।
0: दोस्तों, कहने को तो हम सब एक आजाद भारत में रहते हैं, पर आजादी हमें आज भी पूरी रीति से नहीं मिली है। आज भी हमारे देश में लड़कियां कई रूप से पाबंद हैं और उन्हें कई क्षेत्रों में अभी भी आज़ादी नहीं मिलती है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ने की, नौकरी करने की, अपने सपने पूरे करने की आज़ादी नहीं है। परंतु वे आज भी बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, शारीरिक शोषण, पुरुष प्रधानता, सती प्रथा जैसी प्रचलन में पाबंद है। आज हम हमारी कहानी के द्वारा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि किसी की कही बात किसी के दिल में किस प्रकार घर कर जाती है, वह उनके जीने तक की इच्छा को खत्म कर देती है या फिर अंदर ही अंदर उन्हें तनाव में ले जाती है। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर।
2: अरे ज्योति, कहाँ हो?
3: जी काकी, आइए आइए, अंदर आइए।
2: कैसे हो, आजकल दिखाई नहीं देते।
3: बस काकी, बढ़िया हूँ। अरे काकी, ये घर के कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है? पहले तो पीयू काम में हाथ बटा देती थी, पर अब तो वो पढ़ाई में लगी हुई है। बस परमेश्वर करे बच्ची की मेहनत सफल हो जाए।
2: अरे ज्योति, तेरी क्या मत मारी गई है क्या, जो लड़की को घर के काम न सिखा कर पढ़ने में लगा दिया है?
3: अरे काकी, कैसी बातें कर रही हो आप? आजकल पढ़ाई के बगैर कुछ है क्या?
2: ज्योति, तू नहीं समझेगी, लड़की को फोन दे रखा है, अकेले बाहर आने जाने की अनुमति भी दे रखी है, यह सब तुझको आगे भारी पड़ेगा।
3: नहीं नहीं काकी, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पीहू ऐसी नहीं है।
2: हाँ, पर बाहर की हवा लगने में समय नहीं लगता, बाकी तो जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस समझा रही थी, उम्र में तजुर्बे से तुमसे बड़ी हूँ।
3: जी काकी, पर मेरी पीहू ऐसी नहीं है।
2: मैं जानती हूँ ज्योति, तभी तो कह रही हूँ, जिन संस्कारों में बच्ची पली बड़ी है उसे उसी में रहने दो। ये बाहर नौकरी के लिए जाना, ज्यादा पढ़ना, फिर बच्चे पूछते भी नहीं है माँ बाप को, तुम उन्हें जानती हो ना, मेरे राजसमंद वाले भाई को?
3: हाँ काकी।
2: उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, इतनी अच्छी लड़की थी, समझदार, होशियार, बाहर सूरत पढ़ने गई और फिर लौट कर आई नहीं।
3: काकी, जितना मैं अपने बच्चे को जानती हूँ ना, मेरी पीहू अपने माता पिता की बहुत कदर करती है, अगर हम उसे कहे ना तो वो बिना कुछ कहे सब कुछ छोड़ देगी, पर हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची खूब आगे बढ़े, अपना, अपने गांव का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन करे।
2: हाँ चलो, ऐसा ही हो बस, अब मैं चलती हूँ ज्योति, कभी समय निकाल कर घर पर आना और अपना, मोहन का और पीहू का भी ध्यान रखना।
3: जी काकी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा।
4: पीहू बेटा।
5: जी माँ, आई।
3: बेटा, आप क्या कर रहे थे?
5: माँ, मैं पढ़ रही थी, फिर पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई थी, आपने आवाज दी तो उठ कर गई।

0: बेटा तुम सच में पढ़ती ही हो ना बस, या फोन में कुछ?
1: नहीं नहीं माँ, ये आप कैसी बात कर रहे हो? माँ सब ठीक है ना?
2: ज्योति, मैंने सुना है, ये क्या पूछ रही हो तुम पीहू से?
0: आप आज वो पड़ोस वाली काकी आई थी, खूब सुना रही थी मुझे। सीधे सीधे तो कुछ बोल नहीं पाई, परंतु बहुत कुछ कह के गई है। मुझे बस मेरी बच्ची पीहू की चिंता हो रही है।
2: ज्योति, तुम अच्छे से जानती हो हमारी पीहू कैसी है, तुम उसकी माँ हो।
0: वो तो मैं जानती हूँ, पर आप भी तो जानते हो ना, हमारे यहाँ लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की अनुमति नहीं है। बस वो घर संभालती है, आज तो बस काकी भूल कर गई है, पर कल कोई ऊंच नीच हो गई तो सारे गांव वाले हमें ही सुनाएंगे।
2: अरे ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसी बातों ना तो सोचो ना ही करो। हमारी पीहू बहुत होशियार है, अच्छे से पढ़कर कलेक्टर बनेगी और हमारे पूरे गांव का नाम रोशन करेगी हमारी बेटी।
0: हाँ आप सही कह रहे हैं।
2: और ज्योति, अब ना तुम कुछ ऐसा सोचोगी ना ही कोई ऐसी बात करोगी जिससे हमारी पीहू परेशान हो। उसे मन लगाकर पढ़ने दो, बस कुछ ही दिनों में उसकी परीक्षा है।
1: जी माँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपका या फिर पापा का नाम खराब हो। मैं बस आपका नाम रोशन करने का काम करूंगी।
2: शाबाश बेटा, चलो पीहू अब तुम तुम्हारे कमरे में जाकर पढ़ाई करो। ज्योति, मैं जानता हूँ गांव में ज्यादा लोग पढ़ाई के महत्व को नहीं समझते, उनके लिए चूल्हा चौका एक लड़की की जगह और संस्कार है। घर, पति, बच्चे, यह सब संभालने के लिए बनाया है, पर सही उम्र में और पढ़ना या कुछ बनकर अपने गांव, शहर, अपने देश के लिए कुछ करना गलत नहीं है। हमारे पीहू के विचार बहुत अच्छे हैं, वो चाहती है कि वो हमारे और ऐसे कई गांव की परिस्थितियों को बदले और कुछ सहयोग कर सके।
0: जी आप सही कह रहे हैं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी जिससे हमारी पीहू परेशान हो।
2: चलो अब सो जाते हैं।
3: पीहू बेटा कैसी हो?
1: मैं अच्छी हूँ काकी जी, आप कैसी हो?
3: मैं भी अच्छी हूँ पीहू बेटा। ये अचानक से तुम्हारा वजन कैसे बढ़ गया?
1: वो क्या है ना, सारा दिन बैठकर पढ़ती रहती हूँ ना, इसलिए बस अब कुछ दिन बाद परीक्षा है, उसके बाद सैर कसरत करके मैं पहली जैसी हो जाऊंगी।
3: हाँ बेटा सेहत पर भी ध्यान दो, मोटी लड़कियों को आजकल कोई पसंद नहीं करता।
0: काकी हमारी पीहू इतनी प्यारी है कि कोई भी उसे देखते ही पसंद कर लेगा।
3: अरे ज्योति बुरा मत मानो, मैं तो पीहू की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। अच्छा वैसे तुम्हें पता चला, पास के गांव की रेखा शहर गई थी पढ़ने के लिए, वहीं एक लड़के के साथ चक्कर चल गया।
0: अरे वो रेखा उर्मिला काकी की बेटी?
3: हाँ वही रेखा।
0: अरे उर्मिला काकी ने उसके लिए कितना किया था।
3: तभी तो तुम्हें समझाती हूँ ज्योति, समय रहते समझ जाओ, पर तुम तो कुछ सुनती समझती ही नहीं हो।
1: पर काकी सब एक जैसे तो नहीं होते हैं ना?
3: पीहू बेटा तुम अभी छोटी हो, तुम कुछ नहीं समझती। ज्योति पर तुम तो समझदार हो ना, कैसा जमाना है, तुम तो समझती हो ना कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है।
0: जी काकी शायद आप सही बोल रहे हो, और पीहू बेटा आप छोटे हो, आप चुप रहो। चलो काकी मैं अभी घर चलती हूँ। पीहू बेटा मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं देख सकती बेटा, तुम्हें जितना पढ़ना है यहीं पर पढ़ो और एक आम जिंदगी जियो जैसे सब जीते हैं। ठीक है बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे सपने बड़े हैं, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जिससे मैं अपनी बेटी को ही खो दूँ।
1: माँ वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर आप चिंता मत करो, मैं वही करूँगी जो आप कहोगे।
0: थैंक यू बेटा, मैं चाहती थी कि जो तुम चाहती हो वो बन जाओ, पर बेटा अब मुझे बहुत डर लग रहा है।
1: माँ आप डरिए मत, मैं यही हूँ आपके पास।
2: पीहू तुम किचन में?
1: अरे बाबा आप, वो मम्मी की ना तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए मैं खाना बना रही थी।
2: क्या हुआ ज्योति को?
1: कुछ नहीं बस वो ऐसे ही, और वो कमरे में अभी आराम कर रही हैं।
0: अरे आप आ गए,
2: तुम ठीक हो ज्योति, क्या हुआ तुम्हें? पीहू बेटा तुम जाओ पढ़ाई करो, यह मैं देख लूंगा।
1: नहीं पापा मैं बाद में पढ़ लूंगी, आप माँ के साथ

0: बैठे हो।
1: ज्योति मुझे बताओगी क्या हुआ?
0: ज्योति पड़ोसियों की इधर उधर की और अपने दिल की चिंता, वह उसका निर्णय कि पीहू बाहर जाकर नहीं पड़ेगी, वह समाज में चल रही हर एक बात मोहन को कह सुनाती है कि किस प्रकार वह अपने लोगों से लड़ते लड़ते थक चुकी है। देखते हैं अब मोहन किसका साथ देगा और किस प्रकार इस परिस्थिति को संभालेगा।
1: पीहू इधर आओ बेटा, मुझे आपसे और आपकी माँ से ये उम्मीद नहीं थी। अब बेटा तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, परीक्षा दो, मुझे तुम पर भरोसा है, मेरी बेटी अपना मुकाम हासिल कर लेगी, बस इतनी मेहनत करके पीछे मत हटना।
2: थैंक यू सो मच पापा, मुझ पर भरोसा करने के लिए।
1: जाओ अपने कमरे में जाओ बेटा। ज्योति मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है तुम पर मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ कि ऐसे ही किसी की बात सुनकर इतना नकारात्मक मत हो, अपनी बेटी पर भरोसा करो। अगर इस समय हमने उसका साथ नहीं दिया तो शायद जरूर हमारी बच्ची हमसे दूर हो जाएगी।
2: मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद ही अपनी बच्ची का जी

0: इस परिस्थिति को संभालेगा।
1: पीहू इधर आओ बेटा, मुझे आपसे और आपकी माँ से ये उम्मीद नहीं थी। अब बेटा तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, परीक्षा दो, मुझे तुम पर भरोसा है, मेरी बेटी अपना मुकाम हासिल कर लेगी, बस इतनी मेहनत करके पीछे मत हटना।
0: थैंक यू सो मच पापा, मुझ पर भरोसा करने के लिए।
1: जाओ अपने कमरे में जाओ बेटा। ज्योति मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है तुम पर मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ कि ऐसे ही किसी की बात सुनकर इतना नकारात्मक मत हो, अपनी बेटी पर भरोसा करो। अगर इस समय हमने उसका साथ नहीं दिया तो शायद जरूर हमारी बच्ची हमसे दूर हो जाएगी।
0: मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद ही अपनी बच्ची का जीवन खराब करने चली थी।
1: ज्योति लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनके मुंह भी नहीं बंद कर सकते। कोई मोटा हो तो भी उन्हें दिक्कत है, कोई पतला हो तो भी उन्हें दिक्कत है। हम सबको परमेश्वर ने उसकी स्वरूप और समानता में बनाया है, इस बात के लिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए।
0: जी सही कहा आपने।
1: ज्योति याद रखना, वही बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं जिनके माँ बाप उन्हें समझते नहीं। अपनी बेटी का साथ दो, उस पर भरोसा करो और उसकी मेहनत की कद्र करो। प्रार्थना करो कि परमेश्वर से कि हमारी बच्ची सफल हो जाए और परमेश्वर उसे अच्छी बुद्धि दे, लोगों की बातों पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखो।
0: जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगी, मैं अपनी बच्ची का साथ दूंगी।
1: और हाँ मैं खुद जाऊंगा अपनी बच्ची के साथ उसे परीक्षा दिलवाने।
0: पीहू आज तो तुम्हारा नतीजा आने वाला है ना परीक्षा का।
2: हाँ माँ।
0: बेटा आप इतने परेशान क्यों हो?
2: डर लग रहा है माँ मुझे।
0: अरे मेरी बेटी मुझे पता है नतीजा अच्छा ही आएगा, तो डर मत।
1: पीहू ज्योति जल्दी बाहर आओ, कहाँ हो? अरे पीहू बेटा तुमने परीक्षा पास कर ली है और तुम्हारा पहला पड़ाव भी कलेक्टर के लिए पास हो गया है।
2: आप सच बोल रहे हो ना?
1: हाँ बेटा हाँ, ज्योति मैंने कहा था ना कि पीहू कर लेगी। चलो मिठाई उठाओ, चलो मेरे साथ।
0: कहाँ?
1: काकी कैसी हो, ये लो मुंह मीठा करो।
3: अरे मिठाई किस खुशी में?
1: हमारी पीहू ने पहला पड़ाव पार कर लिया है।
3: अरे वाह बहुत बहुत बधाई।
0: जी हाँ काकी, अब आप देखना जिस तरह हमारी पीहू ने परीक्षा अच्छे अंकों से पास करी है ना, वो आगे के भी सारे पड़ाव पार कर और जरूर अपने मुकाम पर पहुँच कर हमारे देश का नाम ऊंचा करेगी।
3: हाँ ज्योति, और तुम सब मुझे माफ कर देना, मैंने पीहू के लिए गलत बोला, पर अब मुझे विश्वास है हमारी पीहू सबसे अलग व समझदार है।
1: शुक्रिया काकी। और पीहू ही क्या, हमें किसी के लिए भी कुछ भी गलत बोलने का हक नहीं है बिना उसकी परिस्थिति जाने।
3: हाँ बेटा मुझे माफ कर देना।
1: नहीं नहीं काकी कोई बात नहीं, यह तो खुशी मनाने का समय है।
4: तो श्रोताओं जैसा कि हमने आज पीहू की कहानी से देखा कि किस प्रकार पीहू बहुत पढ़ने वे अपने परिवार गांव देश का नाम रोशन करने के सपने देखती थी, परंतु समाज की गलत वह नकारात्मक सोच का असर उसके परिवार उसकी माँ के मन तक आ गया। परंतु मोहन की समझदारी की वजह से पीहू अपने सपने को पूरा कर पाई।
5: कार्यक्रम से जुड़े विचार और सवाल आप हम तक शीघ्र से शीघ्र पहुँचाएं। हमारा नंबर है
6: 8527449955। जी हाँ 8527449955।
5: हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। इसी के साथ मैं राखी आपसे विदा लेना चाहूँगी। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

18 मिनट हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज इस प्रोग्राम में आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंच। इंस्टाग्राम पर भेजी गई आपकी जो फरमाइश है वो हम सिलसिलेवार इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं और आज सबसे पहले किशोर कुमार का गाया हुआ गाना प्ले करते हैं कटी पतंग फिल्म से। इसे सुनवाने के लिए नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिडा और अलका मिडा ने कहा है। सुनिए अपनी फरमाइश।

अभी आपने स्पॉन्सर प्रोग्राम सुना हमारी बेड़ियाँ। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। ग्यारह बजकर

अभी आपने किशोर कुमार को सुना कटी पतंग फिल्म से। म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस इस प्रोग्राम की ये पहली फरमाइश हमने पूरी की और अब बारी है अगली फरमाइश की। अगली फरमाइश हमें काला पत्थर फिल्म के गाने को सुनवाने के लिए मिली है। मिहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से ये फरमाइश भेजी है। आपकी फरमाइश पर मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में ये गाना काला पत्थर।

अभी आपने काला पत्थर फिल्म से गीत सुना। अगला गाना साजन फिल्म से एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में। इसे सुनवाने के लिए सेक्टर 9 पंचकुला से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक ढींगरा और इनके साथियों ने फरमाइश भेजी है। एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में ये गाना है साजन, ये फिल्म है।

साजन फिल्म का गाना एसपी बालासुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना। म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन एआईआर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का गाना है किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। इस गाने को सुनवाने के लिए हमें जो फरमाइश मिली है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप,

0: अगली फरमाइश प्रोग्राम की आपके रेडियो सेट पर आ रही है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि शाह अश्विन शाह मंगलाबेन शाह राजेंद्र जी शाह की फरमाइश पर यह गाना हम प्ले कर रहे हैं। मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में ये गाना है। तीसरी मंजिल ये फिल्म है।
1: ओ हस

मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में तीसरी मंजिल फिल्म से ये गाना हमने आपको सुनवाया। और साथियों, बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग जगहों से फरमाइश इस प्रोग्राम में आती है और फरमाइश के बहाने हमें इतना प्यार मिलता है, इतनी और साथ में मीठी मीठी फरमाइश आप हमें भेजते हैं। भाई, इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, समय निकालने के लिए और अपनी फरमाइश भेजने के लिए। तो चलिए अब गांव हांडी खेड़ा चलते हैं। ये है

हरियाणा के सिरसा में, यहां से हमें फरमाइश भेजी है राधे शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा ने। इन्होंने काम चोर फिल्म का गाना सुनवाने के लिए कहा है, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है।

कामचोर फिल्म के गाने के बाद अब बारी है आशिकी फिल्म के गाने की, जिसे सहारनपुर से राधा नामदेव, अर्पणा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा ने सुनवाने के लिए कहा है। कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गाना।

एक हमें कमेंट मिला है जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर का। इन्होंने कहा भी किसी भी गीत में शामिल कर दें, तो हमने आपके नाम प्रोग्राम में शामिल कर लिए हैं। जसपुर उत्तराखंड से आपने हमें नाम भेजे हैं। और बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशबद सिंह राहुल, आपने जो फरमाइश भेजी है वो गाना शामिल नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल जो गाना शामिल कर रहे हैं, हम थोड़ा आगे चलेंगे, दो बदन फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज़ में ये गाना है, और इसे सुनवाने के लिए हमें ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही और महराज जहां ने आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, उत्तराखंड से ये फरमाइश भेजी है। फिलहाल ये गाना हम प्ले कर रहे हैं दो बदन फिल्म से।

आशा भोसले की आवाज में दो बदन फिल्म से आपने गाना सुना। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया की फरमाइश फिलहाल पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब जो फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं वो आंखें फिल्म से है। इसके लिए हमें नाम भेजे हैं ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। इनका गांव है पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ और फिल्म है आंखें।

गांव न थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता आपकी फरमाइश पर अभिलाषा फिल्म का गाना प्ले कर रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।

और अब अगला गाना मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनवाने के लिए MLB रोड ग्वालियर से ये फरमाइश मिली है सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और SK पप्पी की। इन्होंने पारस मणि फिल्म का गाना सुनवाने के लिए कहा है। सुनिए अपनी फरमाइश।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने पारस मणि फिल्म से ये गीत सुना। अब दोस्तों कार्यक्रम का समय लगभग समाप्ति की ओर है। जिन श्रोताओं की फरमाइश आज के इस प्रोग्राम में पूरी हो गई उनसे विनती है कि वो कल के प्रोग्राम के लिए थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिन श्रोताओं की फरमाइश पूरी नहीं हो पाती उनकी पूरी हो, कम से कम एक प्रोग्राम में तो हो ना, तो उसके लिए हम सब ने मिलकर कोशिश करनी है। तो इस कोशिश में हमें मालूम है आप हमारे साथ रहते हैं। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने के अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: तो साथियों ये तो था कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। ये लाइव फरमाइशी कार्यक्रम होता है। इंस्टाग्राम पर भेजी गई आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। दोपहर के 12 बजने को ही कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारण

0: कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 12:05 हुए हैं। आइए अब चलते हैं विविध भारती मुंबई अगले प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है यादों की महफिल।

फिल्म शोर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा और साथियों की आवाज़ों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और आज यादों की महफिल में वो गीत जो जीवन पर या जिंदगी पर आधारित हैं और गीतकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी के बारे में लिखा है।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म से आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में जीवन के अलग अलग रंगों को, भावों को खूबसूरती से लिखे गीतों में जिन्होंने पिरोया है, वो गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे दूरियां फिल्म से। जयदेव का संगीत था और सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।
4: उनके जुल्फे उन...

रत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान,

0: कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से। नदीम श्रवण का संगीत और समीर ने इसे लिखा था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

जिंदगी इत्तफाक है, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि ने संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है।

फिल्म हम दोनों से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत था। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आपको जानकारी दे दें उन कार्यक्रमों के बारे में जो दूरदर्शन हरियाणा पर आज दिखाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में बाद दोपहर 3:30 बजे आप देखेंगे कार्यक्रम शाने हरियाणा, हरियाणवी लोकगीत और लोक नृत्य पर आधारित ये कार्यक्रम। शाम 5 बजे सोशल मीडिया पर चल रहे मुद्दों और सतर्कता पर आधारित कार्यक्रम होगा सोशल मीडिया कॉलिंग। शाम 5 बजे किसान प्रोग्राम में कृषि अनुसंधान और किसानों की समस्या और निदान और उपलब्धियों पर प्रोग्राम यह होगा। और शाम 6 बजे नो माई सिटी हरियाणा, हरियाणा के पर्यटन के दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम आप देखेंगे दूरदर्शन हरियाणा पर। तो ये तो थे आज दूरदर्शन हरियाणा पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का एक बज चुका है। अब जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में हमारे केंद्र से 1:05 पर, और 1:10 पर हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए। यही क्रम रहता है शाम 6:10 पर पहले हिंदी में, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 2:15 पर, शाम 5:00, शाम 6:00, रात 8:45 पर समाचार संध्या, और रात 11। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे शाम 5:20 पर और 5:30 उमंग, शाम 6:30 पर अमृत बानी कार्यक्रम में आप श्रवण करेंगे शब्द, शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सुनेंगे कुछ पंजाबी गाने, रात 10:30 पर सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाते हैं मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 1:15 पर, शाम 5:05 पर। विविध भारती मुंबई से जो प्रोग्राम रिले किए जाएंगे उन प्रोग्रामों में 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर, 2:00 वंदे मातरम एक जय घोष, 2:30 सदाबहार नगमे, 3:00 महिलाओं के लिए फोन इन प्रोग्राम हेलो सहेली, 4:00 में शाम 4:00 गीतों भरी कहानी कार्यक्रम में आज की कहानी है रिश्ते, लेखिका विधि जैन,

शाम 7 बजे फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम में फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे। रात 8 बजे प्रोग्राम हवा महल में वीएम आनंद की लिखी झलकी आप सुनेंगे एक दिन प्यार का। रात 8:15 पर चित्रलोक 9 बजे आपके लिए। रात 9:30 बजे आज के फनकार प्रोग्राम केंद्रित रहेगा अभिनेता पंकज कपूर पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम छाया गीत। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जो अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित किए जाएंगे। कुछ कार्यक्रम हमारे यहाँ से यानी आकाशवाणी चंडीगढ़ से और कुछ विविध भारती मुंबई से जो रिले किए जाते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 1:05 होने को है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए। तो पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पंजाब हरियाणा सहित 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम

0: से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 11 मई से 11 जून राज्यव्यक्ति मुफ्त पशु टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। विभाग के महानिदेशक डॉ. प्रेम सिंह ने स्वयं विभिन्न जिलों में चल रहे टीकाकरण का जाकर निरीक्षण किया। डॉ. प्रेम सिंह ने बताया कि विभाग की टीमें घर घर जाकर गायों और भैंसों को मुंहखुर और गलघोटू जैसे जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए एक ही संयुक्त टीका लगा रही है, जिससे कि पशुओं को संक्रामक वायरस और बैक्टीरियल संक्रमण से बचाया जा सके, ताकि दुग्ध उत्पादन प्रभावित न हो और पशु की जान बचाई जा सके। अब तक विभाग द्वारा कुल 55,00,000 पशुओं में से 18,00,000 पशुओं को टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पशुपालकों को ये सुविधा निशुल्क दी जा रही है। विभाग द्वारा टीकाकरण के लिए चलाई जा रही मोबाइल वैन के बारे में डॉ. प्रेम सिंह ने कहा,
2: केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत 1,00,000 एनिमल के ऊपर एक वैन का प्रोविजन किया गया है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री नरसिंह सैनी जी ने निर्देश दिए हैं कि इसका समय बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी समय जो चल रहा है इसका 12 से लेकर रात 8 बजे तक है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको 6 से लेकर रात 10 बजे तक का किया जाए, जो की अभी रिकॉर्ड दिन है। इसका खास फायदा क्या है कि इसमें जो हमारा एक टोल फ्री नंबर रहता है 1962, इस पे कोई भी फॉरवर्ड कॉल करेगा तो उस कॉल से उसको रिवर्ट बैक उसको वापिस फोन आ जाएगा कि उसके घर पे डॉक्टर कितनी देर तक पहुंचा।
1: कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान दिया जाएगा। पलवल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. बाबूलाल ने बताया कि किसान योजना का लाभ लेने के लिए 15 जून तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के उपरांत 25 जून को उपायुक्त की अध्यक्षता में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ड्रॉ निकाला जाएगा।
3: ईआरएम स्लोप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत हमारे पास टारगेट आ रहे हैं। इसमें 12 मशीनें हैं जो हमारे आने वाले टाइम में सीआरएम जो स्ट्रास ट्रबल बनी उसको मैनेजमेंट करने के लिए काम आएंगी, और 15 तारीख तक किसान भाई अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें सुपर सीडर है और बेलर मशीन भी है, हे रैक है और सुपर सीडर भी है और रोटरी स्लेसर है। इसमें किसान अपनी इंडिविजुअल मशीन भी ले सकते हैं। इसमें 50% अनुदान है और डायरेक्ट ये किसान के बैंक खाते में आएगा।
1: योजना के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए किसान कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सरकार द्वारा अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में डाली जाएगी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में आंधी, बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि 30 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आज और कल कई जगहों पर और 31 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज इक्का दुक्का जगहों पर ओलावृष्टि होने का अनुमान भी जताया गया है। पंचकुला के रामगढ़ स्थित टीबीआरएल रेंज ने 31 मई को होने वाले हाई कैलिबर बस परीक्षण को लेकर एडवाइजरी जारी की है। प्राप्त पत्र के अनुसार ये परीक्षण 31 मई को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक वायुसेना के उच्च अधिकारियों की देखरेख में किया जाएगा। इस हाई कैलिबर बम के ट्रायल से उड़ने वाले कण आसमान में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई और जमीन पर 2 किलोमीटर के रेडियस तक के गांव भानु और गांव बिल्ला स्प्लिंटर प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय प्रशासन को इन गांवों में लोगों को इस समयावधि के दौरान घर के अंदर रहने के दिशा निर्देश जारी करने की सलाह दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हूँ तुम गुरविंदर सिंह सहोता तो प्रादेशिक खबर सुनो। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तहत पंजाब हरियाणा ते हिमाचल प्रदेश समेत 12 सूबे 10,000 करोड़ रुपए तो वादी रकम जारी की। इस मौके श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह यकीनी बनाने लई वचनबद्ध ने कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे घर में ना रहे। उन्होंने कहा कि 4.95 करोड़ घर के टीचे के मुकाबले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तहत 3.91 करोड़ घरों पहला ही प्रवानगी।

दे दिती गई है। श्री चौहान ने कहा कि 3 करोड़ तो वध घरां दा निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वख वख भलाई योजनावां नाल पेंडू परिवारां दे जीवन पद्धर नूं बेहतर बनाउण लई लगातार काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आवास योजना ग्रामीण अधीन मंजूर किए गए लगभग 75% कर्जा दा औरतां दे नाम ते ने जां सांझी मालकी हेठ ने। सूबे दे 102 स्थानक इकाइयां लई होईयां चोणां लई वोटां दी गिणती सवेरे 8 बजे तों सख्त सुरक्षा प्रबंधां हेठ जारी है। साढ़े पत्रकारों ने दस्सिया है कि जिला चोण अधिकारियों ने कई थावां ते उम्मीदवार जेतू ऐलान दित्ते ने ते ओह अपनी जित्त दा जशन मना रहे ने। इसे दौरान राज चोण कमिश्न मुताबक खबर लिखे जाण तक आप ने 201, कांग्रेस ने 55, श्रोमणी अकाली दल ने 61, आजाद उम्मीदवारों ने 61, भाजपा ने 11 ते बसपा ने 1 सीट उत्ते जित प्राप्त की है। कमिशन मुताबक सूबे भर के 1977 वार्डों चो 80 वार्ड अजिहे ने जिथे उम्मीदवार सर्वसम्मति नाल चुने जा चुके ने। इन्हां चोणां विच आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, श्रोमणी अकाली दल ते आजाद समेत कुल 7554 उम्मीदवार चोण मैदान विच ने। अंतिम गिनती राज चोण कमिशन वल्लों जल्द ही जारी की जाएगी। इन्हां चोणां लई 26 मई नूं वोटां पईआं सन, जिस

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: अगला गाना भी इंदिवर का लिखा हुआ है, बप्पी लहरी का ही संगीत है, लेकिन इस बार आशा भोसले के साथ शब्बीर कुमार और कुमार सानू हैं। ये फिल्म है घायल।

0: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
1: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रहीं। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
0: ये आकाशवाणी है।
1: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
0: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
1: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
0: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
1: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
0: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
1: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
0: ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी है।

अभी आपने अनुराधा पौडवाल और देवाशीष दासगुप्ता की आवाजों में ये गाना सुना। बाबुल बोस के संगीत में नक्श लालपुरी के बोल लिखे थे और ये फिल्म थी जीना तेरी गली में। यही था अब तक का फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: या पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: दोपहर के 1:30 हो चुके हैं। अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई अगले प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है सुरीला सफर।
2: हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाजार जो कि रात भर खुला रहता है और वहां पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है, एक बार जाने का मौका मिला था। और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकुला में भी हाट बाजार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते रहिए और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लेकिन वो बात कहा मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे, फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर का संगीत। साथ ही इन गीतों को सुनते हुए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी चिलचिलाती धूप में ठंडे गानों की बौछार हो रही है और विविध भारती को सुनते हुए मन प्रसन्न हो रहा है और सुखद प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए। जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए, और आपके जो संदेश है वो हम तक पहुँच कर हमें ठंडक दिला रहे हैं। बिल्कुल। और बाजारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो भगोरिया हाट कहलाता है, जो होली के 7 दिन पहले से लगता है। भगोरिया हाट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये आदिवासी समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर पान खिलाना और गुलाल एक दूसरे पर रंग डालना सामाजिक भाईचारे को प्रगाढ़ करता है। जी हाँ, देखिए आज कितना कुछ पता चल रहा है हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं ज़्यादातर अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। शॉप पर जाकर चीज़ों को हाथों से चुनना, परखना और चीज़ों को खरीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि

मिलती है इससे। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी आ जाती है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ने पर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है। साथ ही एक और बाजार के बारे में बात हो रही है। हमारे साथ ही लिखते हैं कि मेरा शहर वडोदरा, यहाँ गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ के बाजार और मेले इस शहर की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलता है, कपड़े भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन डाइनिंग विकल्प मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, और काफ़ी लंबा मैसेज दिया है इन्होंने और ज़रूर आप पढ़ें और ज़रूर यहाँ पर घूमने जाएं। साथ ही साथ एक और साथी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाज़ार अजमेर के डिगी बाज़ार, नाला बाज़ार, दरगाह बाज़ार, नया बाज़ार और भीलवाड़ा के भी प्रसिद्ध बाज़ार है, सांगानेर बाज़ार, पवन बाज़ार, आज़ाद बाज़ार। जी हाँ बिल्कुल, मैं वाकिफ़ हूँ इससे भी क्योंकि यहाँ पर भी मैं घूमी ज़रूर हूँ। तो कितना अच्छा लगता ना, अलग अलग जगह की जानकारियाँ मिल रही हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि साप्ताहिक घाट तो हर जिला गांव में लगते हैं। बिहार के बांका जिले में एक जगह कपड़ों की हाट लगती है जहां हाथ के बने हुए कपड़े मिलते हैं। महाराणा हाट बुनकरों द्वारा बनाए हुए सिल्क और सूती कपड़े गमछे वो ले लेती हैं। भोपाल हाट भोपाल में एक प्रमुख बाजार है जहाँ विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। यहाँ जड़ी बूटियाँ और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और जूट उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से बने सामान मिलते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे हस्तशिल्प और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह बताता है। जी हाँ, यहाँ पर जाकर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज मुझ तक पहुँच रहे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ और आपके मैसेजेस पर मैं आती हूँ।

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और विजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपके लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें जो बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नज़दीक है जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है, बहुत ही स्वादिष्ट, और खरीदारी का मज़ा तो बाजार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाजार लगता है जहाँ मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांवों तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने गोल्डन टेंपल में, और उसके आसपास काफी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर जिले में बड़ा बाजार है जहां हस्तशिल्प, अच्छी डिजाइन की मोजड़ियां, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क, चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं, दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहां से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहाँ के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाजार, भोटिया मार्केट से गरम स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो।

इटारसी में भी एक मार्केट है, बाजार है, जिसे पटवा बाजार कहा जाता है शायद, अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूँ तो। और यहाँ पर शादी के काफ़ी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है और श्रृंगार का भी काफ़ी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है, जहाँ पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है, और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव, जो कि पूरी ज़िले में है, वहाँ पर भी काफ़ी प्रसिद्ध रंगीन छतरियाँ, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीज़ें हैं वो मिलती है, कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैम्प कवर आदि। जी हाँ, बाजारों की बात की जाए तो भिंडी बाजार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया, हमारे श्रोता लिखे हैं कि बहुत पहले यहाँ पर आए थे और घूमे थे, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफ़ी सारे एंटीक्स यहाँ पर मिलते हैं, और काफ़ी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाजार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाजार बहुत मशहूर है, यहाँ छोटी से छोटी चीज़ यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे बाजारों के बारे में आज पता चला मुझे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कश्मीर की कली इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, और आप सब ने इस गाने की डिटेल्स तो लिखी दी है मुझे। बाजारों की बातें तो हो ही रही है, तो ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि लखनऊ का अमीनाबाद एक अच्छा बाजार है, सस्ता महंगा हर कैटेगरी की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े बर्तन जूते सोने चांदी, अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पर और हर तरह के सामान मिलते हैं, स्कूल की ड्रेसेस आदि भी बहुत मिलती है यहाँ पर, उसका भी बड़ा बाज़ार है। और साथ ही साथ बाज़ारों की बात की जाए, जी हाँ, कहने को गोरखपुर में हिंदी बाज़ार माया बाज़ार है, लेकिन सिंगार के सामान कपड़े और आभूषण हिंदी बाज़ार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाज़ार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूँ, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूँ मैं। गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई भी गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है, लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या काम है। आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए, और अब इसी फहरिस्त में यह अगला गीत।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और साथ ही आपके बहुत खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुँचे हैं, वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: सुरीला सफर का वक्त अब खत्म होने को है, लेकिन आपके प्यारे प्यारे संदेश अब तक है मेरे पास। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज पूरे 1000 कमेंट तक पहुंचने वाले थे लेकिन थोड़े से रह गए, लेकिन किसी दिन इतने सारे कमेंट्स के साथ जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गोरखपुर में गोलघर भी है, नौका विहार भी है, भारत का सबसे लंबा स्टेशन रामगढ़ ताल भी घूमकर आए हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं SH बिहारी के लिखे बोल बहुत ही सीधे और दिल में उतरने वाले होते हैं, और ये जो गीत अभी इन्होंने सुना ये बहुत ही अच्छा लगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने प्यारे और मीठे संदेशों के लिए। और मैं अनुराधा इजाजत चाहती हूँ आज इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफर। आप बने रहें विविध भारती के संग।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 30वीं कड़ी।

0: 21वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1905 को बनारस में हुआ। नरमपंथियों के नेता, नामदार और प्रखर देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगस्त महीने से बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भड़का हुआ था। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कुछ रियासतों के साथ ब्रिटिश समर्थक प्रतिष्ठित लोगों ने खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस वाराणसी अधिवेशन में उनके भारत आगमन पर आनंद व्यक्त करते हुए इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ को कांग्रेस की यह राजभक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे लिखते हैं,
1: राजपुत्र आए, मुल्क के सभी पात्रों के पुत्रों ने उन्हें घेर लिया। अन्य कोई भी वहां प्रवेश न पा सका। इस घेरे पर कोतवाल पुत्रों का पहरा लग गया, इसलिए उन्हें शिरोपा प्राप्त हुआ। इसके बाद ढेर सारे पटाखे छूटे और राजपुत्र जहाज पर चढ़कर वापस चले गए।
2: फिर भी इस अधिवेशन से राजसत्ता के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली नेताओं की नरम भाषा धीरे धीरे बदलने लगी। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत में ही अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें देश भर में पहुंच चुकी थीं। इस आंदोलन में बंगाली जनता के पीछे देश की संपूर्ण भारतीय जनता खड़ी है, इसका एहसास इस अधिवेशन से हुआ। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाल के विभाजन को रद्द करने का आह्वान ब्रिटिश राजसत्ता से किया गया।

वंदे मातरम की दृष्टि से यह अधिवेशन स्मरणीय रहा। रविंद्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी चौधरानी और उनके पति रामभुज दत्त इस अधिवेशन में उपस्थित थे। सरला देवी का हाल ही में विवाह हुआ था। भगिनी निवेदिता और उनकी सहकर्मी अबला बसु भी अधिवेशन में उपस्थित थीं। अधिवेशन शुरू हुआ और दर्शकों में से आग्रह होने लगा कि सरला देवी चौधरानी वंदे मातरम गीत गाएं। सरला देवी चौधरानी एक उत्तम कवियत्री और गायिका भी थीं। श्रोताओं के इस आग्रह से अध्यक्ष नामदार गोखले चिंतित हो गए। बंग भंग विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण वंदे मातरम शब्दों के उच्चारण पर भी जिलाधीश ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में मंच से ही वंदे मातरम का गायन होना नरमपंथी गोखले जी को खतरनाक लगने लगा। अंततः श्रोताओं के आग्रह के कारण उन्होंने सरला देवी से कहा कि वंदे मातरम की शुरुआती कुछ पंक्तियां ही गाएं। परंतु सरला देवी ने अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम गाना शुरू किया और पूरा गाकर ही समाप्त किया।

0: वंदे मातरम की घोषणाओं से सारा अधिवेशन गूंज उठा। इसी समय सरला देवी ने ये गीत गाते हुए सप्त कोटि कंठ इन शब्दों की जगह त्रिशत कोटि कंठ शब्द बदल दिए। वंदे मातरम के शब्दों में किया गया ये पहला बदलाव था। इस अधिवेशन में एक और ऐतिहासिक घटना घटी, वो ये कि भारत के पहले राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन इसी अधिवेशन में पहली बार हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय अपनी स्वतंत्र पहचान वाला भारत का राष्ट्रध्वज होना चाहिए, ये विचार सन 1900 के बाद सामने आया। 1905 में बनारस में हुए इस कांग्रेस अधिवेशन में पास के एक अलग मंडप में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी के बीचों बीच भारत का कहा जाने वाला पहला ध्वज जानबूझकर प्रदर्शित किया गया था। विशेष बात ये कि पूरी तरह भारतीय संकल्पना वाले इस ध्वज की मूल परिकल्पना जन्म से विदेशी और मन से पूरी तरह भारतीय बन चुकी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता की थी।
1: लाल रंग के इस वर्गाकार ध्वज पर बीच में इंद्र के वज्र का पीले रंग का चित्र था। इस चिन्ह के एक ओर वंदे और दूसरी ओर मातरम, ये बांग्ला लिपि के शब्द थे। ध्वज के किनारों पर 108 पीली ज्योतियां थी। यह ध्वज उस प्रदर्शनी में केवल प्रदर्शित हुआ, उसे कहीं भी फहराया नहीं गया, इसलिए इसे पहले ध्वज का दर्जा नहीं मिल सकता। फिर भी तैयार किया गया यह आद्य राष्ट्र ध्वज ही माना जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन रहे वंदे मातरम शब्दों का इस पहले ध्वज पर उपयोग किया जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वंदे मातरम शब्दों का महत्व और सामर्थ्य जैसे जैसे सामान्य जनता के ध्यान में आने लगा, वैसे वैसे अंग्रेज सरकार को उसका उपद्रव महसूस होने लगा। सरकार ने वंदे मातरम गाने या शब्द उच्चारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण वंदे मातरम का प्रभाव और बढ़ने लगा। भंग भंग विरोधी आंदोलन को वंदे मातरम, स्वदेशी का समर्थन, विदेशी माल का बहिष्कार, इन बातों ने और अधिक बल दिया।
0: अगस्त को टाउन हॉल में हुई सभा के कारण बंगाल के विभाजन का आम जनता में जो विरोध था, उस सभा में उसकी हुई तीव्र निंदा और स्वदेशी का आग्रह, ये बातें पूरे देश में फैल गईं। उसमें से पहली बड़ी चिंगारी महाराष्ट्र के पुणे में गिरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में बंगाल के विभाजन पर और कर्जन पर अत्यंत कठोर शब्दों में टीका की थी। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर उस समय पुणे में फर्ग्यूसन महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। 1 अक्टूबर को एक सभा बुलाकर युवा सावरकर ने पुणे के लोगों से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का आह्वान किया।
1: इस सभा में समाचार पत्र काल के संपादक शिवराम महादेव परांजपे और नची केड़कर उपस्थित थे। इस सभा के बाद बाहर गांव से लौटे लोकमान्य तिलक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली और बड़े पैमाने पर करने का सुझाव दिया। 7 अक्टूबर 1905 के दिन लकड़ी पुल के पास मुठा नदी के किनारे पूरे पुणे में घूमकर इकट्ठा किए गए और जुलूस के साथ बड़ी गाड़ी पर लादकर वहां लाए गए विदेशी वस्त्रों की होली की गई। इस होली की आग ब्रिटिशों के लंदन स्थित राज सिंहासन तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी, ऐसा भाषण उस समय लोकमान्य तिलक ने दिया। वंदे मातरम की घोषणाओं के बीच जलती लपटों ने पूरा वातावरण उज्ज्वल कर

0: दिया। पुणे में हुई विदेशी वस्त्रों की उस विशाल होली के बाद पूरे देश भर में ऐसी होलियां जलने लगी।
1: 1905 के अंतिम चार महीने ऐसे ही जबरदस्त हलचल के बीते। विभाजन विरोधी आंदोलन की तीव्रता बढ़ी, फिर भी नए आए लॉर्ड मिंटो ने कर्जन की ही नीति आगे चलाई। कर्जन और फुल्लर के जैसे वाग्बाण न छोड़ते हुए इस आंदोलन के नेताओं को कभी मीठी मीठी बातों से फुसलाकर तो कभी धमकी देकर कार्रवाई का डर दिखाकर इस आंदोलन की हवा निकालने का वे प्रयास कर रहे थे, परंतु आंदोलनकारियों का निश्चय और पक्का होता गया, जिससे लॉर्ड मिंटो भी दमन की नीति और कड़ाई से लागू करने लगे। इसी आंदोलन के कारण पूरे विश्व को ब्रिटिश राजसत्ता के उन्मत्त, अमानवीय और हिंसक व्यवहार का दर्शन हुआ। उसके लिए निमित्त बने वे वंदे मातरम शब्द और बारिसाल में हुआ राष्ट्रीय सभा के युवाओं का अधिवेशन।

0: ही नीति आगे चलाई। कर्जन और फुल्लर के जैसे वाग्बाण न छोड़ते हुए इस आंदोलन के नेताओं को कभी मीठी मीठी बातों से फुसलाकर तो कभी धमकी देकर कार्रवाई का डर दिखाकर इस आंदोलन की हवा निकालने का वे प्रयास कर रहे थे, परंतु आंदोलनकारियों का निश्चय और पक्का होता गया, जिससे लॉर्ड मिंटो भी दमन की नीति और कड़ाई से लागू करने लगे। इसी आंदोलन के कारण पूरे विश्व को ब्रिटिश राजसत्ता के उन्मत्त, अमानवीय और हिंसक व्यवहार का दर्शन हुआ। उसके लिए निमित्त बने वे वंदे मातरम शब्द और बारिसाल में हुआ राष्ट्रीय सभा के युवाओं का अधिवेशन।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 30वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, गायिका अपर्णा केलकर, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
2: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक

0: शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा

0: पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
1: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म चोरी चोरी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गीत गाया पत्थरों ने, ये था फिल्म का नाम। किशोरी अमोनकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मेरे महबूब इस फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

फिल्म प्यासा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन का संगीत था।

0: फिल्म बंदिनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हेलो सहेली।

0: सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते। सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही है और कहाँ से बात कर रही है?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक उनकी कटिंग करते हैं, फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी, वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर उन बनाते हैं माल।
0: अच्छा।
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगे हमें?
1: जी, मेरा तो गिराकी काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज को ही आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी, सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
0: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
1: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
0: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
1: सिर्फ पोशाक होने ना, वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
0: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
1: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
0: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
1: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
0: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: जी, थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मेरा दिल से, मुझे तेरा प्यार मिला।
0: आपकी
1: मैं
0: पसंद
1: का नाम लेना चाहूंगी मैम।
0: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
1: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली, और राजवाड़े पे मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
0: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे हैं।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी,
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छी करती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
1: हाँ बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका बताएंगे?
1: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ और स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही।
0: सिर्फ नाड़ी देखकर तो आप रोग का पता लगा लेती हैं?
1: हाँ हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
0: और जो रोगी होते हैं ना, ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में कि जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या
1: नहीं? दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा।
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
0: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए?
1: नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की।
0: प्रेरणा जी आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
1: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है तो यादों की बारात का चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
0: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहां से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही मैम।
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते हैं मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश राम झूला लक्ष्मण झूला और हरिद्वार यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के अभी नाम लिए ना ये सब वो

0: जगह है मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है
1: जैसे
0: ना,
1: मसूरी मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया, और हरिद्वार ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम। आजकल
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी, घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम, और रेडियो सुनना।
0: अच्छा, रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली, हेलो फरमाइश,
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से।
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
1: हाँ
0: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय?
1: हाँ मैडम, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की,
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर ही में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती, आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर ही में रहते मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: त्रिपुरा से मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं।
1: जी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: एक बेटा दुई बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
1: हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: जी मैम, बहुत बारिश चलते
0: हैं। सखी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का बोल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी।
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम में अब समय है एक अंतराल का।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ।

0: क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
1: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती है या लाइव सुनती है यूट्यूब पर आप?
0: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
1: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
0: हाँ।
1: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
0: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
1: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
0: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
1: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
0: नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो उन्हें क्लियर करती हूँ और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
1: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
1: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही हैं?
1: जी, मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं।
1: जी
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: तो घर पे करने

0: के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं।
1: जी
0: और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं।
1: जी
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: वो आरओ का प्लांट पे ये बनाते हैं, जो उसको फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े।
0: जी
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक।
0: हाँ
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ, सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से, तो रात के 11 बजे तक चलता है। और फिर अपने काम निपटा के 3 मिनट रेस्ट करती हूँ, अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी, इधर लेट जाती हूँ।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
1: जी
0: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरे ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका

0: ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है, साइड में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा, और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को।
0: फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: जी, सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं।
1: जी,
0: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम?
1: हेलो सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीत की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं?
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ। मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी।
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी।
1: हाँ।
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी।
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है, और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम।
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैम, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी

0: को डॉक्टर बनाऊंगी।
1: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता या आपको?
0: नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना, मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी फैमिली ही रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने वैसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी, पापा मम्मी आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो, मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
1: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया, और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मेरे मम्मी पापा के लिए अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साई राम।
1: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खिंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा था।
1: जी, मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने कभी किशोर कुमार का

0: जो वहाँ पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी, मैं स्थान पर गई हूँ
0: जी।
1: और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ मैं जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं?
1: जी
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी
0: जी
1: अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से,
0: जी
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है?
1: जी जी
0: बहुत अच्छी बात है, एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से,
0: जी
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवाल दीवाना,
0: रफी साहब का गाया हुआ।
1: जी जी जी
0: हर्षिता, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 022-400-2462, 022-28-670-288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 022-400-2462। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 022-28-670-288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते, और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूम आते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने, और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते। और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई, असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह था, इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए, हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है, कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा, हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला, कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। और धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे परंतु उनकी सुनता कौन था, शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई। जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश माँ की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन उंगलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

0: पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।
1: बहुत

संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन, एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आई। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों

0: के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने हुए, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। न्यायालय की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
3: श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के विश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस हुरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर एक तक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। भारत ने स्वच्छ

0: ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी समझौते के प्रति वचनबद्धता दोहराई। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 192 अंक गिरकर 74,776 पर बंद हुआ। निफ्टी 359 अंक गिरकर 23,548 पर दर्ज हुआ। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब मिलकर आनंद लेते हैं कुछ फिल्मी गीतों का। सबसे पहले आपको सुनवा रहे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मिस्टर नटवरलाल। इस फिल्म का गाना, संगीत है राजेश रोशन का और बोल है आनंद बख्शी के।

डॉन। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, बोल हैं अनजान के और संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आप प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Family trip plan करने से पहले करें destination research. कम budget में कर सकेंगे enjoy. Family के साथ outing पर जाना थोड़ा खर्चीला option हो सकता है, लेकिन यदि vacation की planning सोच समझ कर budget friendly trip plan करने का सबसे अच्छा option है कि transport पर अधिक पैसा न खर्च किया जाए. अगर आप सेंटर ऑफ द कैपिटल सिटी दिल्ली के पास नैनीताल, भीमसेन या मसूरी के चुनाव कर सकते हैं या कम समय में ट्रिप पर जा सकते हैं. फैमिली के साथ वेकेशन पर जाने का मतलब है तनाव और चिंता को दूर कर लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना. साल में एक बार हर कोई फैमिली ट्रिप प्लान करता है. फैमिली के साथ आउटिंग पर जाना थोड़ा खर्चीला ऑप्शन हो सकता है. समटाइम्स इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट विद सो मेनी चार्जेस गोइंग अप. इसके लिए एक बजट बनाना जरूरी है जिसके हिसाब से अन्य चीजें फिक्स की जानी चाहिए. साथ ही यदि डेस्टिनेशन की पूरी जानकारी है तो ट्रिप और भी आसान हो जाता है. चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ट्रिप्स के बारे में जिनकी सहायता से फैमिली वेकेशन को बजट फ्रेंडली बनाया जा सकता है. वेकेशन पर जाने से पहले डेस्टिनेशन का चुनाव बेहद जरूरी है. ऐसे डेस्टिनेशन का चुनाव करें जो आपको बजट के हिसाब से हो. अपने सिटी के आसपास भी कुछ लोकेशंस आप देख सकते हैं विच हैव सम हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है कि ट्रांसपोर्ट पर अधिक पैसा न खर्च किया जाए. शहर के आसपास के डेस्टिनेशन का चुनाव करें. इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय खुद का ट्रांसपोर्ट यूज किया जा सकता है. इसे प्लेन या ट्रेन का महंगा टिकट लेने से बच जाएंगे और कम पैसे में डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे. बजट फ्रेंडली वेकेशन के लिए किसी ट्रैवल साइट की मदद ली जा सकती है. ये साइट्स कम बजट में भी पूरी ट्रिप प्लान कर देते हैं. ये साइट्स टिकट से लेकर होटल्स, ट्रांसपोर्ट, साइट विजिट, लंच व डिनर तक का अरेंजमेंट करते हैं. यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है जब परिवार साथ होता है. सबके साथ घूमने फिरने का जो आनंद है उसके अलावा सबसे बड़ी निश्चिंतता होती है किसी भी तरह की औपचारिकता का न होना. परिवार साथ है तो खर्च को लेकर भी राहत आ जाती है. मन में यह भाव रहता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हुआ भी तो मिलकर संभाल लेंगे. फिर यही यादें जीवन भर के लिए मन में बस जाती है. साथ बिताए पल पूरे परिवार के लिए सकारात्मक ऊर्जा पाने का अवसर बन जाता है. सब इससे कुछ ना कुछ नया सीख भी जाते हैं. एक दूसरे को समझने का मौका भी पाते हैं. जब नई पीढ़ी नौकर, शादी या पढ़ाई को लेकर शहर या देश से बाहर जाते हैं तो पुराने एल्बम से यही यादें निकालकर माता पिता के साथ बिताए दिनों की तसल्ली देती है. इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो परिवार के साथ यात्रा करने से अनुभव होता है. जानिए तफसील से आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से.

बॉन्ड बनने का मौका। तेज भागते दौड़ते जीवन में हर एक व्यक्ति समय की कमी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान होता है। बड़ों को दफ्तर या घर से फुर्सत नहीं होती है, तो बच्चे और युवाओं को पढ़ाई और वर्चुअल दुनिया से छुटकारा मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में वेकेशन सबको एक साथ लाने का सबसे बेहतर विकल्प बताती है। घर में रहते हुए भी बच्चे और पेरेंट्स के बीच संवाद की कमी और दूरियों को एक छुट्टी मिटा डालती है। रिश्ते के बीच बॉन्ड बनाने के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं मिल सकता है। फिर चाहे छुट्टी बिताने पति पत्नी जाए, पेरेंट्स और बच्चे, या फिर भाई बहन, भावनात्मक रूप से जुड़ने का ये बहुत अच्छा तरीका साबित हो सकता है। चाहे आप 2 दिन की छुट्टी से वेकेशन पर ही क्यों ना जाए। 7 गुजरे गए पल आपको पूरे जीवन के लिए खुशियां सहजने का मौका देते हैं। जब भी मन उदास हो या कोई उलझन घेरे, इन छुट्टियों में बिताए पलों के फोटो या वीडियो या मन में बैठी यादों को रिवाइंड कर लेने से आप प्रफुल्लित महसूस करने लगेंगे। ये वो पल होते हैं जब आप अपने बेस्ट स्वरूप में सबसे निश्चित और खुश होते हैं। इसीलिए छुट्टियों में बिताए समय हमेशा आपको खुशियां देने और तरोताजा करने का काम करते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसी छुट्टियां रिश्तों में आने वाली कड़वाहट को दूर करने का भी जरिया बन जाती है। हर रोज उसी रूटीन से जूझते हुए शायद आप ये भूल जाए कि आपकी पत्नी, बहन, बेटी या घर की अन्य महिलाएं संगीत या नृत्य में भी रुचि रखती है, या कि आपके पापा या भाई बहुत अच्छा विसलिंग करते हैं, या कि आपके घर का कोई सदस्य या फिर किसी की फोटोग्राफी स्किल्स बहुत ही शानदार है। छुट्टियों में साथ समय बिताने से ऐसी कई बातें सामने आती है और आपको ये याद दिलाती है कि हर व्यक्ति खास है, हर व्यक्ति में कोई हुनर है। इस बात का एहसास ही अपने आप में खास है, क्योंकि यह आपको उस व्यक्ति के बारे में करीब से सोचने का, उसके प्रति सम्मान महसूस करने का अवसर देता है और रिश्तों में गर्माहट भरने का काम भी करती है। नए को जानना भी और नए को जीना भी। केवल बड़े ही नहीं, बच्चे भी इससे बहुत कुछ सीखते हैं। कई बार तो स्कूल किताबों से आगे की बात भी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बचपन के संस्मरणों में इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह उनके पिता के साथ की गई यात्राएं उन्हें प्रकृति और परिवेश के बारे में अद्भुत जानकारियां पाने में सहायता करती थी। हर नए सफर ने नए स्थान तक जाने में हम भिन्न संस्कृतियों, खान पान, भाषाओं, बोलियों, लोगों आदि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और सीखते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो यात्रा ही आपको दे सकती है और जीवन में ये बहुत काम भी आती है। सफर के दौरान हो या किसी जगह पहुंचने के बाद अचानक आने वाली मुश्किल का एक ही हल होता है, तुरंत उसका समाधान ढूंढना। यात्राएं आपको यह भी सिखाती है नए मौसम में समंजस बैठना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि एक्टिविटीज के जरिए अपनी सीमाओं को चुनौती देना, नए वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना आदि वह स्थितियों को जो आपको सकारात्मक बने रहने में मदद करती है। ये केवल यात्रा के लिए नहीं है, वेकेशन के बाद भी जीवन में आने वाली कई स्थितियों में ये रवैया मदद कर सकता है। खासकर परिवार के बच्चे और युवाओं के लिए एक दूसरे की ताकत बनने का अवसर अक्सर साथ रहते हुए भी परिवार के सदस्य इस साथ रहने की ताकत को नहीं समझ पाते। ये बात एक छोटी सी वेकेशन समझा सकती है। उदाहरण के लिए कहीं गाड़ी में कोई खराबी आ जाना, कहीं होटल में जगह न मिल पाना आदि जैसे चुनौतियां सामने आने पर परिवार किस तरह एक साथ इनका सामना करता है और इनके पार निकलता है। ये एक प्रकार का मोटिवेशन होता है जो यात्रा के दौरान मिलता है। बच्चों से लेकर बड़ों को ये बात समझ में आती है कि हमें साथ पाना या मदद के लिए अपने परिवार से बढ़कर सहयोग और कोई नहीं मिल सकता है। यही हमारी असली ताकत है। यात्राओं के दौरान सभी बहुत कुछ सीखते हैं और जानते हैं। इसमें दुनिया की व्यवहारिक सीख पाने के अलावा खुद को कई स्तरों पर परखने का मौका भी मिलता है। बच्चों को खेलने, दौड़ने, भागने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। बंद इमारतों से अलग खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलता है। बच्चों को यदि आप पैसे का प्रबंध सिखाना चाहते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है। इससे बच्चों को आने जाने के रूट, नए शहरों की जानकारी, मैप का उपयोग करना आदि

जैसे चीजें भी सीखने को मिलती है। यानी कुल मिलकर यात्रा परिवार के लिए एक ऐसा अनुभव बनाती है जो उम्र भर सबके काम आती है। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली वेकेशनिंग। With this information, we come to the end of today's program. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. This is your RJ Chetan signing off. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
0: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
0: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
0: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओ, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
0: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
0: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
0: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
0: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
0: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
0: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
0: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि

0: इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है
1: जी।
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातःकाल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
1: जी
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
0: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का
0: जी,
1: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
1: जी
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर

0: चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
1: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
0: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
1: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
1: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
0: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस, लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
1: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
0: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
1: युद्ध शुरू हो चुका था।

लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर

0: कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जौबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है, यह नंबर 1 और यह नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान, सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।

0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए ये हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे।

0: मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
1: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
2: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
1: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
2: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
3: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
1: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
2: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम

0: की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 6 बजने को कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, वो रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अकादमी

0: की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह अकादमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ से यह आकाशवाणी है, तो तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: पटना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: आओ हम सुन लिया दिलजीत दोसांझ ते शाश्वत सचदेव दी आवाज़ों विच धुरंधर द रिवेंज दा एक गीत।

0: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वस्त किया कि नीट की पुनर्परीक्षा की प्रक्रिया बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला से प्रदेश भर में लगभग 100 करोड़ रूपये से अधिक लागत की स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के सभी जिला अस्पतालों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद। एक और पोत के 3 जून को विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद। और कुरुक्षेत्र में जिला संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने एक सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वस्त किया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला से वर्चुअल माध्यम द्वारा पूरे प्रदेश में लगभग 100 करोड़ से अधिक लागत की 9 स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने की। मुख्यमंत्री ने 22 करोड़ 29 लाख रूपये की लागत से बने 30 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन तथा 21 करोड़ 50 लाख रूपये की लागत से बनने वाले 16 नए स्वास्थ्य स्थानों का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष और समर्पित उपचार के लिए राज्य के सभी जिला अस्पतालों में प्रतिवर्ष 34 लाख रुपए की लागत से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक की शुरुआत की।
3: स्वस्थ हरियाणा और समृद्ध हरियाणा के हमारे संकल्प को आज एक नई ताकत मिल रही है। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आज उद्घाटन हरियाणा वासियों के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज का दिन इसलिए भी विशेष है, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को लगातार तेज गति से आगे बढ़ाने के 12 वर्षों की जन सेवा यात्रा का आज गौरवपूर्ण उत्सव भी हम सब मना रहे हैं।

0: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उनमें पानीपत, कुरुक्षेत्र और जिला के अस्पतालों में एमआरआई सेवा और चरखी दादरी जिला अस्पताल और बहादुरगढ़ उपमंडल अस्पताल में सीटी स्कैन सेवा शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है।
1: आयुष्मान भारत योजना, चाहे जन औषधि केंद्र, डिजिटल हेल्थ मिशन, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, हम सब देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब के घर द्वार तक पहुंचाना हमारी सरकार का प्रथम ध्येय है।

0: डिजिटल हेल्थ मिशन, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, हम सब देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब के घर द्वार तक पहुंचाना हमारी सरकार का प्रथम ध्येय है।
1: स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए इस बार 14 करोड़ से अधिक का बजट दिया गया है।
2: वर्ष 2014-15 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है तथा पिछले वर्ष से लगभग 3500 करोड़ ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मानव संसाधन की कमी को पूरा करने, नए उपकरण उपलब्ध करने, जांच सेवाओं में विस्तार करने, दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है।
1: मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश भर में आज स्वास्थ्य परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां मंत्री और विधायक मौजूद रहे। हिसार में मौजूद कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बताया,
3: हिसार के अंदर 3 जगह पे सब हेल्थ सेंटर खोले गए हैं, एक सरावा में, एक अखोद में, बड़ाखेड़ा में, और लगभग 2 करोड़ की लागत इसमें आएगी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम क्षमता पर काम कर रहे हैं।
4: हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशिएंट स्टॉक है, नेचुरल गैस और क्रूड की सफिशिएंट इन्वेंट्रीज टाइड अप है। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 TMT पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
1: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापत्तनम पहुंचने की आशा है। इस पोत से लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लाया जा रहा है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने आज कुरुक्षेत्र में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के मासिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 12 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी 6 मामलों को अगली बैठक तक लंबित रखा गया। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने एक सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए। मीडिया से बातचीत में एफआईआर को लेकर श्री कृष्णलाल पंवार ने कहा,
5: जिस प्रकार से नेग्लिजेंसी मुझे नजर आई तो मैंने एफआईआर के आदेश दिए। अधिकारियों से मेरी यही अपील रहेगी कि कोई भी ऐसा अवसर ना दे जिससे मुझे कोई एक्शन लेना पड़े। मैं कोशिश करता हूँ और अधिकारियों से भी यही बात होगा कि हर मामले को आप निपटा करके मेरे पास सामने आए तो उसमें लोग कहें कि हमें न्याय मिल चुका। अभी किसान भाइयों ने शिकायत मुझे दी है और मैंने बाकायदा डीसी साहब को दी है।
1: वल्लभगढ़ में आज मुजेसर अंडरपास निर्माण कार्य विधिवत भूमि पूजन के साथ शुभारंभ किया गया। वल्लभगढ़ के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस अंडरपास के निर्माण से लोगों को जाम और दुर्घटनाओं से बड़ी राहत मिलेगी। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला ये अंडरपास लगभग 18 महीने में तैयार होगा।
6: 12 करोड़ की जमीन परचेज करी है और अंडर पास 12.5 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी बनाएगा और जो 6.5 करोड़ की लागत से रेलवे 30 करोड़ के आसपास की लागत से पुल बनकर तैयार होगा और जिससे मंजेसर धाम को लाभ मिलेगा, उद्योग जगत को लाभ मिलेगा और 22-23 NIT संजय कॉलोनी और GT रोड से आवागमन मिलेगा जिससे कनेक्टिविटी इधर से नहीं थी।
1: हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इलाज की फीस वसूले जाने के मामले में निजी अस्पताल के खिलाफ उचित कार्रवाई न करने के चलते भिवानी सिविल अस्पताल के आयुष्मान के मामलों को देखने वाले अधिकारी विनोद को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में आंधी चलने, बादल गरजने और बारिश होने का अनुमान लगाया है। विभाग ने कहा है कि आज 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि 30 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। आज और कल कई जगहों पर

और 31 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वस्त किया कि नीट की पुनर्परीक्षा की प्रक्रिया बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला से प्रदेश भर में लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के सभी जिला अस्पतालों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक की शुरूआत की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: बिजली दा बिल जीरो, होर पैदा हुई कोई भी वादू बिजली ग्रिड नू बेच के पैसे भी कमा सकते हो। ता तुसी बैठे क्यों हो, हुणे रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in ते।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुन तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। सर्वोच्च अदालत ने देश दीआं सारीआं उच्च अदालतां नूं अपने फैसले राखवें रखण दे 3 महीनियां दे अंदर अंदर उस नूं सुनाउण दे निर्देश दित्ते। पंजाब दीआं 102 स्थानक इकाइयां लई होईआं चोणां वास्ते वोटां दी गिणती सख्त सुरक्षा प्रबंधां हेठ जारी। भारत नूं स्वच्छ ऊर्जा दे खेत्र च इक इतिहासक उपलब्धि हासिल करदिआं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना तहत 40 लाख घरां दीआं छतां ते सोलर पैनल लाए। मौसम विभाग वल्लों कल लई पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ दे वख वख हिस्सिआं च गरज चमक नाल गड़ेमारी बारे ऑरेंज अलर्ट जारी। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 मुलजमान 5 पिस्तौलों ते 22 कारतूसा समेत गिरफ्तार करके गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। आईपीएल क्रिकेट अज दूजे क्वालीफायर मुकाबले च राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला न्यू चंडीगढ़ विखे शामी 7:30 बजे गुजरात टाइटन्स नाल। सर्वोच्च अदालत ने अज देश दीआं सारीआं उच्च अदालतां नूं अपने फैसले राखवें रखण दे 3 महीनियां दे अंदर अंदर उस नूं सुनाउण दे निर्देश दित्ते ने। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि फैसलों में देरी पटीशन कर्तावां नूं ना पूरा होण वाला नुकसान पहुंचा सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ते जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने निजी आजादी नाल जुड़े मामलों च तेजी नाल फैसले लैण दी जरूरत ते जोर दिता। बेंच ने कहा कि जमानत अर्जियां दे हुक्म उसे दिन जां फिर अगले दिन सुनाए जाने चाहिए ने ते अपलोड कीते जाण। सिखरली अदालत ने भी कहा कि जमानत देण जां सज़ा मुअत्तल करन दे हुक्म दे ऐलान तो तुरंत बाद जेल अधिकारियों नूं सूचित करना लाजमी है। विचाराधीन कैदी नूं उसे दिन जां घट्टो घट अगले दिन रिहा कीता जाणा चाहिए है। पंजाब 102 नगर निगमां लई वोटां दी गिणती सवेरे 8 बजे तो जारी है। कई सीटां ते जेतू उम्मीदवारां दा ऐलान कर दिता गया। इस बहुकौमी मुकाबले च सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सब तो वध सीटां ते अग्गे है, उस तो बाद कांग्रेस ते होर पार्टियां ने। खबरां लिखे जाण तक आम आदमी पार्टी हुण तक 881 वार्डां च जित प्राप्त कर चुकी है ते कांग्रेस 355 वार्डां च जित प्राप्त करके दूजे स्थान ते है। श्रोमणी अकाली दल ने 178 वार्डां च, बीजेपी ने 153 वार्डां अते बहुजन समाज पार्टी ने 6 वार्डां च जित हासिल कीती है। आजाद उम्मीदवारां ने 245 वार्डां च जित प्राप्त कीती है जो कि श्रोमणी अकाली दल नूं किते ज्यादा है। सूबेवार दे 1977 वार्डां तो मुख राजनीतिक पार्टियां ते आजाद उम्मीदवारां ने कुल 7554 उम्मीदवार चोण मैदान च ने। हालांकि 80 वार्डां तो 80 उम्मीदवारां नूं पहलां ही बिना मुकाबला जेतू ऐलान दिता गया सी। कुल 35 लाख तो वध वोटरां विचों 22,38,241 वोटरां ने अपनियां वोटां पाईआं, जिस नाल पोलिंग फीसद लगभग 64 हो गई। 26 मई नूं वोटां पईआं सन। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के खेत्र में एक इतिहासक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय नवी ते नवीनयोग ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दसिया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना तहत हुण तक 40 लाख घरां दीआं छतां ते सोलर पैनल लगाए गए ने। उन्हां दसिया कि योजना सिर्फ एक नवीनयोग ऊर्जा पहलकदमी नहीं है, सगों नागरिकां नूं बिजली खपतकारां तों बिजली उत्पादकां विच भी बदल रही है। यह योजना परिवारां नूं बिजली दीआं लागतां घटाउण, सरकारी सबसिडियां का फायदा उठाउण अते जीरो बिजली बिलां वल वधण च मदद कर रही है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूरज घर योजना तहत तो फिरोजपुर रेलवे मंडल ने सूरजी ऊर्जा के खेत्र च अहम उपलब्धि हासिल की है। मंडल ने 22 रेलवे स्टेशन से 846 किलोवाट समर्था वाले छत से लगन वाले सोलर पावर सिस्टम सफलतापूर्वक चल रहे ने। फिरोजपुर मंडल के रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने दसिया कि जल्द ही 12 होर स्टेशन से करीब 400 किलोवाट समर्था वाले प्लांट लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि

0: स्टेडियम च शामी 7:30 बजे तो खेडिया जाएगा। आखिर च खास खबर एक बार फिर तो सर्वोच्च अदालत ने देश सारियां उच्च अदालतों अपने फैसले राखवें रखने के 3 महीनों के अंदर अंदर उसनों सुनाने के निर्देश दिए। पंजाब दी 102 स्थानक इकाइयों लिए हुई चोणों वास्ते वोटों की गिनती सख्त सुरक्षा प्रबंधा हेठ जारी। मौसम विभाग वालों कल पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के वक् वक् हिस्सों च गरज चमक नाल गड़ेमारी बारे ऑरेंज अलर्ट जारी। आईपीएल क्रिकेट में आज दूजे क्वालीफाई मुकाबले राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला शामी 7:30 बजे गुजरात टाइटन्स नाल। इस दे नाल ही प्रदेशित खबर खत्म हुई। राष्ट्रीय खबर का अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे शाम 7:30। नमस्कार।
1: MHz से यह आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। आहुन सर्वन कर दिया शब्द अमृत बाणी के तहत। सब तो पहला सर्वन कर दिया भाई हरजिंदर सिंह की आवाज ए शब्द।

फौजी भाइयों के कार्यक्रम जयमाला में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। सभी सुनने वालों को प्रीति शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं देशभक्ति से भरे इस गाने के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म योद्धा से। इसे गाया है बी प्राग ने। गीतकार मनोज मुंतशिर है, संगीत तनिष्क बागची का है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

अभी आपने सुना भारतीय सेना का गीत। गीत संगीत और गायक कलाकार थे कैलाश खेर। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में जिंदगी और मौत फिल्म का गाना। गीत शकील बदायूनी ने लिखा है, संगीत सी रामचंद्र का है।

0: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में खामोशी फिल्म का गाना, गीत लिखा गुलजार ने, संगीत से सवारा हेमंत कुमार ने।
1: वो

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अब सुनते हैं छैला बाबू फिल्म का गाना किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

तेरे लिए जीना है, तेरे लिए जीना है, तेरे लिए मरना है। यार दिलदार तेरे जैसा चाहिए, प्यार के लिए मगर पैसा चाहिए।

अभी आपने रॉकी फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत आदि बर्मन का। कार्यक्रम जयमाला का शेष भाग अंतराल के उस पार।

अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में खुशबू फिल्म का गाना, गीत गुलजार का है, संगीत आर डी बर्मन का।

0: लीजिए सासू जी आ रही हैं। सास और बहू का टकराव किस घर में नहीं होता, लेकिन हमारा घर, हे भगवान, दोनों को समझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, अब तो ये बोतल ही है।
1: हे भगवान, तुमने ये कौन से जन्म की सजा दी है जो ये मुसीबत हमारे खानदान में आ गई।
0: अरे कौन सी मुसीबत?
1: हाय, अब मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट में लिख के दूं कि कौन सी मुसीबत? अजीब वही मुसीबत जिसे बड़े चाव से बहू बनाकर टोली में डालकर इस घर में लाए थे।
0: क्यों, अब क्या हुआ?
1: अजीब वही जो रोज होता है। मैंने जरा सा डांट डपट दिया तो आगे से पूछती है, क्या हुआ माता जी, क्यों नाराज हो रही है? मैंने क्या किया
0: है? अगर तुम नाराज हो रही थी तो बताने में क्या
1: है? अजी, तुमने तो उसे सर पे चढ़ा रखा है। अजी, हमारा भी जमाना था, तुम्हारी माँ मेरे बाल नोचकर मेरे हाथ में पकड़ा देती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की कि सासू जी क्यों बाल नोचे आपने, याद है ना तुम्हें?
0: हाँ याद है। अरे तुम्हारे हाथों में बालों का गुच्छा होता था, और ये भी याद है कि मैंने एक दो बार वो बाल देखे तो पता चला कि वो बाल तुम्हारे नहीं, मेरी माता जी के थे।
1: अरे वो तो मेरी शादी के एक हफ्ते बाद ही मैं और तुम्हारी माता जी आपस में इतनी घुल मिल गई थी कि सासू जी के बाल मेरे हाथ में और मेरे बाल सासू जी के हाथ में, पहचानना मुश्किल हो जाता था।
0: यानी कि तू ना रहे, मैं ना रहा। अरे मां, कितना भाग्यशाली हूँ जिसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिल गई। लेकिन अब ये तो बताओ कि बहू ने जो पूछा था कि क्यों डांट रही हो, तो तुमने क्या जवाब दिया?
1: जी मैं पूछती हूँ, सास को क्या हर बार बताना पड़ेगा कि उसने बहू को क्यों डांटा? अरे ये तो सास का मूड है, मन किया तो डांट दिया, लेकिन बहू कौन होती है सास से पूछने वाली? है छह महीने हो गए इस बहू को हमारे घर आए हुए, इसने तो सवाल जवाब कर करके मेरा नाक में दम कर दिया। हे भगवान, अब तो तू मुझे उठा ले भगवान।
0: अरे इस बहू को ठीक करना है तो सास वाला वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपनाओ और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा।
1: क्या, यानी कि मैं बहू को जला दूं?
0: अरे धीरे धीरे बोल, सुनना ले। यही तो एक तरीका है जो इस देश की कई सासें अपना रही है और बहू से छुटकारा पा रही है।
1: हाय हरीश के डैडी, मैं सदके जाऊं तुम पर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी।
0: अरे तो फिर सोच क्या रही है, नेक काम में देर किस बात की? अरे उठ, मट्टी के तेल की बोतल यानी कि सास का आजमाया हुआ हथियार उठाओ और बहू पर हल्ला बोल दो, पका।
1: नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही, पुलिस केस बन जाएगा जी, पकड़ी जाऊंगी, फांसी हो जाएगी।
0: अरे इसका मतलब है हरीश की मम्मी तुम्हें उस नए केरोसिन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता जो मार्केट में आया है। ये देखो,
1: क्या बहू को जलाने के लिए स्पेशल केरोसिन ऑयल? क्या मतलब?
0: अरे यही वो केरोसिन है जो सास छुपकर पीछे से बहू पर उस वक्त छिड़क देती है जब बहू अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है। उस वक्त बहू को ये नहीं पता चलता कि उस पर किसी ने कुछ छिड़का है।
1: अच्छा, तो फिर ये बताओ माचिस कब जलानी पड़ेगी?
0: माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं, यही तो खूबी है इस केरोसिन में। अच्छा? सारा सिस्टम ऑटोमेटिक। केरोसिन छिड़कने के कुछ घंटे के बाद पहले बहू को चक्कर आएंगे और फिर 24 घंटे के बाद वो अपने आप जल जाएगी।
1: अरे हरीश के डैडी, फिर तो मैं एक दो घंटे पहले ही भागकर मंदिर चली जाऊंगी, मैं उधर मंदिर में आरती उतार रही होंगी और मेरी बहू घर में चल रही होगी।
0: अरे ठहरो तो सही, हरीश की मम्मी बात तो सुनती जाओ। हाँ, हर एक को पता है कि तुम दोनों सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हो।
1: हाँ, ये तो सभी को पता है।
0: जब बहू जलेगी तो पुलिस को सबसे पहले तुम पर ही शक हो जाएगा। अरे इसीलिए ये केरोसिन छिड़कने के बाद तुम बहू से प्यार करना शुरू कर दो, दिन में प्यार, दोपहर को प्यार, रात को प्यार, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि तुम बहू से नफरत नहीं उससे प्यार करती हो। जब बहू जलेगी किसी का तुम पर शक ही नहीं।

0: अरे लो, अब बहू जी आ रही है।
1: हाय पिताजी।
0: क्यों बहू, अब क्या हुआ?
1: क्या नहीं हुआ, जो इस घर में हर रोज होता है आपको नहीं मालूम?
0: अरे बेटी, रोती ही जाएगी या कुछ बताएगी भी?
1: आज फिर माताजी ने मुझे बिना बात के डांटना फटकारना शुरू कर दिया। और जब मैंने पूछा कि क्या बात है माताजी, क्यों नाराज हो रही हो, तो कहने लगी सत्यानाश हो तेरा, बहू होकर तुम्हारी ये मजाल मुझसे पूछती है क्या बात है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, आप ही तो कुछ नहीं करते।
0: अरे मैं क्या करूं बेटा, तुम तो उससे 6 महीने में परेशान हो गई हो। मेरी हालत देख, 25 साल से उसे झेल रहा हूं, ये ढोल ऐसा गले में पड़ा है कि उतरता ही नहीं। और मैं तो ठहरा एक बेबस और बदकिस्मत पति, लेकिन तुम एक बहू होकर सास को ठिकाने नहीं लगा सकती।
1: लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूं?
0: अरे बेटी, तुम ही तो हो जो इस घर में कुछ कर सकती हो।
1: आपका मतलब है?
0: अरे ठीक समझ रही हो, बिल्कुल ठीक समझ रही हो।
1: नहीं, ये कैसे हो सकता है पिताजी? एक सास तो बहू को जला सकती है, लेकिन बहू सास को कैसे जला सकती?
0: क्यों नहीं जला सकती, वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है।
1: पिताजी, जैसे घोड़ी पर बैठकर दूल्हा आता है, दुल्हन नहीं आती, जैसे दुल्हन डोली में बैठकर ससुराल जाती है, दूल्हा नहीं, उसी तरह एक सास तो बहू को जला सकती है, लेकिन बहू सास को नहीं जला सकती।
0: लेकिन ये रिवाज बदलना होगा।
1: नहीं पिताजी, मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे फांसी हो जाएगी।
0: इसका मतलब है बहू, तुम्हें उस केरोसिन के बारे में अभी तक नहीं पता चला जो मार्केट में आ गया। ये देखो,
1: सास को चलाने के लिए स्पेशल केरोसिन ऑयल, क्या मतलब?
0: ये वो केरोसिन है जो बहू छुपकर पीछे से सास पर उस वक्त छिड़कती है जब सास अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है।
1: अच्छा?
0: उस वक्त सास को ये नहीं पता चलेगा कि किसी ने कुछ छिड़का है।
1: अच्छा? तो फिर माचिस को जलानी पड़ेगी।
0: माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं। यही तो खूबी है इस केरोसिन में, सारा काम ऑटोमेटिक। पहले कुछ घंटे बाद सास के घुटने कांपने लगेंगे, उसके बाद जब केरोसिन छिड़के हुए 24 घंटे हो जाएंगे तो सास अपने आप जल जाएगी।
1: अच्छा, ओह माय गॉड, फिर तो मैं अपनी फ्रेंड्स के घर कितनी पार्टी रखा देती हूँ। मैं 1 घंटा पहले ही भागकर फ्रेंड्स के घर चली जाऊंगी, और जिस वक्त मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कितनी पार्टी अटेंड कर रही होंगी, उस वक्त पूजनीय सासू जी घर में जल रही होंगी।
0: अरे ठहरो, हरेक को पता है कि इस घर में सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हैं।
1: हाँ, ये तो सभी को पता है।
0: जिस वक्त तुम्हारी सास जलेगी, पुलिस को सबसे पहले शक तुम पर जाएगा।
1: हाँ पिताजी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
0: इसलिए केरोसिन छिड़कने के बाद जब तक तुम्हारी सास जल नहीं जाती, उससे प्यार करना शुरू कर दो।
1: प्यार?
0: हाँ, सवेरे प्यार, दोपहर को प्यार, शाम को प्यार।
1: प्यार और सास से? कभी नहीं। और फिर लोग क्या कहेंगे कि एक बहू होकर सास से प्यार करती है?
0: समझा भी करो बहू, असली प्यार नहीं, ऊपर का प्यार, दिखावे का प्यार, अरे सिर्फ एक दिन का प्यार।
1: अच्छा ठीक है पिताजी।
2: राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम।
1: तो यहाँ बैठी है सासू जी, जी चाहता है इसे मलाई में संख्या मिलाकर खिला दूँ।
2: राधे श्याम। बहू, ओ मेरी प्यारी बहू रानी,
3: आई माता जी।
1: जी माता जी।
2: बहू कहाँ थी तू?
1: मैं यही तो थी माता जी।
2: बेटी, तुम्हें थोड़ी देर भी नहीं देखती हूँ तो दिल घबराने लगता है।
1: अब यही हाल मेरा भी है माता जी, जी चाहता है आप हर वक्त मेरे सामने ही खड़ी रहे और मैं आपको निहारती रहूं।
2: बहू, तू ठीक तो है ना?
1: जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माता जी।
2: वो अभी इसको केरोसिन का असर नहीं हुआ क्या? इसे अभी चक्कर नहीं आया
1: क्या? क्या कहा माता जी, चक्कर?
2: कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, बैठ जा, बैठ जा।
1: चक्कर तो नहीं आ रहे ना?
2: चक्कर? मुझे चक्कर क्यों आएंगे? आएंगे बेटी, आएंगे, जरूर आएंगे। मेरी बहू को चक्कर जरूर आएंगे, मेरी बहू को नहीं आएंगे तो और किसे आएंगे? 6 महीने हो गए शादी को।
1: 6 महीने शादी को हो गए, तो क्या हुआ माता जी?
2: वो
1: अच्छा चलिए छोड़िए माता जी, अब आप बताइए ना, आप तो ठीक है ना?
2: मैं, मुझे क्या हुआ?
1: आपके घुटने तो नहीं कांप रहे?
2: मेरे घुटने क्यों कांपेंगे?
1: कांपेंगे माता जी, जरूर कांपेंगे। अब वो आपकी उम्र हो गई है। लाइए माता जी, मैं आपके घुटने दबा।
2: नहीं नहीं बहू रहने दो,
1: लाइए ना माता जी, लाइए।
2: अच्छा बहू रानी, तुमने आज पहली बार मेरे घुटने दबाए हैं, बहुत आराम मिल रहा है बहू।
1: मेरा बस चले तो घुटनों की बजाय इसके गर्दन दबा दो।
2: क्या कहा?

0: कुछ नहीं माता जी, मैं टंके दबा रही हूँ।
1: भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, मैं इसे जीने दूंगी तब ना।
0: माता जी आपने कुछ कहा?
1: नहीं नहीं बेटी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बहू आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ।
0: कथा?
1: जब कोई प्राणी इस संसार से जाने लगता है तो उसके कानों में कथा की आवाज सुनाई देनी चाहिए।
0: आप क्या कह रही हैं माता जी? अरे इस पुलिया को कहीं पता तो नहीं चल गया किसकी घंटी बजने वाली है?
1: क्या कहा बहू तुमने कुछ?
0: मैं कह रही थी माता जी, चाहे आप बूढ़ी हो गई हैं फिर भी आप अच्छी बनी है, हट्टी कट्टी। आखिरी वक्त आए आपके दुश्मनों का।
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहू, आखिरी वक्त आए मेरे दुश्मनों का।
0: बहू
1: जी एक बात बताओ जी, तुम तो फिल्में देखती हो ना। अच्छा ये बताओ, हीरो और हीरोइन को कैसे पता चलता है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो रहा है?
0: जब उनका दिल धक धक करने लगता है तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें प्यार हो गया है। अच्छा? वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते
1: हैं। हाथ पकड़ लेती है?
0: हाय
1: मेरा दिल भी तो धक धक कर रहा है।
0: माता जी मेरा भी।
1: बहू मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है? चल ठहरो जरा बहू, न जाने क्यों मुझे ये सोने का हार तुम्हें देने को मेरा मन उतावला हो रहा है।
0: माता जी
1: ये लो बहू, पहनो इसे।
0: हाय कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। ये क्या किया आपने माता जी? ये हार आपने मुझे दे दिया? इतना कीमती हार बहू को दे दिया?
1: मुझे खुद पता नहीं बेटी, मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है? लगता है शायद
0: क्या माता जी,
1: शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। बहू
0: ये क्या हो गया है आपको, एक सांस होकर बहू से प्यार करने लगी है?
1: हाँ बहू, नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे।
0: माता जी मुझे भी होता जा रहा है।
1: क्या हो रहा है बेटी?
0: लगता है शायद मैं भी आपसे प्यार करने लगी।
1: अच्छा आओ बेटी मेरे गले लग जाओ। बेटी मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तुम्हें चलाने के लिए तुम पर केरोसिन छिड़क दिया है।
2: माता जी मुझे भी माफ कर दीजिए। माता जी मैंने भी आपको धोखा दिया है, मैंने भी आपको चलाने के लिए आप पर केरोसिन छिड़क दिया है।
1: यानी कि तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें भी केरोसिन दिया है।
2: माता जी वो हम दोनों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।
1: मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगी।
2: माता जी मैं भी आपको नहीं
1: मैंने फोन कर दिया है उन लोगों को बेटी। अब हमें इस दुनिया में कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। हम जिएंगे तो एक साथ, हम मरेंगे तो एक साथ। दुनिया की सांसों एक हो जाओ, अपनी बहुओं को गले से लगाओ।
2: दुनिया की बहुओं एक हो जाओ, अपनी सासू जी से प्यार बढ़ाओ और अपने ससुर जी से खबरदार हो जाओ।
3: बताइए बताइए एक बार क्या बात हुई, कौन बीमार है? आपको क्या तकलीफ?
2: मेरी बहू को बचाइए, मेरी सासू जी को बचाइए।
3: क्या हो रहा है, कितना किसका दलाया ये बताइए।
2: इंस्पेक्टर साहब मेरा बयान लीजिए।
1: नहीं नहीं उनका इस्तेमाल करना चाहिए।
2: इंस्पेक्टर साहब माता जी का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। मैंने इन्हें जलाने की कोशिश की है, धोखा दिया, इसे जलाने की कोशिश की है।
4: इंस्पेक्टर साहब किसी ने किसी को नहीं जलाया। हाँ इन बोतलों में केरोसिन नहीं गुलाब जल है, गुलाब जल।
2: क्या
4: सारे घर में प्यार की वर्षा हो रही है, सास और बहू के प्यार।

ये थी झलकी एक दिन का प्यार। इसके लेखक वी एम आनंद, निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे।

चित्रलोक कार्यक्रम में मैं प्रीति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं के गाए इस गाने के साथ। इसे मिलिया है फिल्म रास 2 से। गीत संजय वासुम का है, संगीत जीत गांगुली का।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आइए अब सुनते हैं एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म का गाना पलक मुछाल की आवाज में। गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा है, संगीत अमाल मलिक का है।

ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गाना, गीत अमिताभ।

आइए अब सुनते हैं फिल्म ब्रेक के बाद का ये गाना, मोनिका डोबरा विशाल दादलानी की आवाज में, गीत प्रसून जोशी ने लिखा है, संगीत विशाल शेखर का।

0: जन सांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में, और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं स्वामी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है किशोर कुमार ने, गीत अमित खन्ना का है, संगीत राजेश रोशन का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में है। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत

Radio Kishanka.

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम।

राह में खो जाएंगे आज तो है, मंजिल कहाँ है हमें क्या खबर।

Ingram.

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में सुनिए हमजोली फिल्म का ये गाना।

0: अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुकेश की आवाज में मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना, गीत शैलेंद्र का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

घड़ी के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन

ये है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन

0: कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत।
1: डायरेक्टर ने आओ देख लो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों, ये गाना फिल्म जलवा का है, जिसमें पंकज कपूर ने अल्बर्ट पिंटो की भूमिका निभाई थी। याद होगा आपको 1987 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, पंकज कपूर है आज के फनकार।

look at her,

0: आइए पंकज कपूर की अभिनय यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: देखिए, मैंने प्री इंजीनियरिंग किया है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले का मुकाम होता है। हाँ, उसमें मैंने कॉलेज को टॉप जरूर किया था, लेकिन काफी मेहनत और काफी अरसे के बाद। और शौक लेकिन हमेशा से मुझे एक्टिंग का रहा था, तो मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम जो करना चाहते हो जिंदगी में करो। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उन्होंने ही पता किया था, फिल्म इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सिलेक्ट कर लिया था। और इस तरह से मेरी तालीम वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई और 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन गया और उसके बाद का मेरा सफर थिएटर और टेलीविजन और सिनेमा का शुरू हुआ।

एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सन 1976 में पंकज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद वो रंगमंच की गंभीर दुनिया में समा गए। दरअसल फिल्मों से पहले उनकी पहली प्राथमिकता रंगमंच। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का मौका उन्हें मिला। भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए गांधी की यानी बेन किंग्सले की आवाज बने थे पंकज कपूर।

राष्ट्र नाट्य विद्यालय की एक रेपर्टरी कंपनी है, वहां पे बतौर अभिनेता एम्प्लॉयड था। जिस वक्त गांधी फिल्म के बनने का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो रिचर्ड एटनबरा जो उसके डायरेक्टर थे, वो हमारे रेपर्टरी कंपनी के नाटक देखने के लिए आए, और उन्होंने नाटक देखने के बाद एक रोल के लिए मुझे चुना अपनी फिल्म में। रोल तो बहुत छोटा सा था, गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी पैरेलल। फिल्म में प्रेजेंस थी ज्यादा, परफॉर्मेंस को बहुत खास नहीं था, लेकिन उस फिल्म के जरिए जो मौका मुझे मिला वो मौका था गांधी के रोल की डबिंग करने का। हिंदी में जो गांधी की डबिंग

गई है बेन किंग्सले के रोल की, वो मैंने की थी। उस वक्त तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था क्योंकि अंग्रेजी जबान से हिंदी जबान में आप डब करेंगे उसको और सिंक भी परफेक्ट होना चाहिए। और 22-1 साल की उम्र से लेकर करीबन 78-77 साल की उम्र तक के गांधी जी को आवाज के जरिए दर्शाना सिनेमा में, वो एक चैलेंजिंग काम जरूर था जो मुझे मिला। तो ये मेरा पहला मौका था या पहला चांस था फिल्मों के अंदर दाखिल होने का। हालांकि इस काम को करने की वजह से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया।

पंकज कपूर ने तमाम नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। फिल्म मकबूल में काम करने के लिए पंकज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2003 में रिलीज फिल्म मकबूल में पंकज कपूर ने जहांगीर खान अब्बाजी का मकबूल किरदार अदा किया था। फिल्म थी विशाल भारद्वाज की, याद होगा आपको।

0: छोटे पर्दे के लिए भी कुछ यादगार भूमिकाएं पंकज ने निभाई हैं। 1985 से टीवी पर करमचंद की शीर्षक भूमिका में वो बेहद लोकप्रिय हुए थे। उनका मैनरिज्म इस कदर प्रसिद्ध हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर करमचंद का नाम था और उनके कैरेक्टर की नकल वो खेल कूद में भी किया करते थे।
1: अभिनय में ये बात बड़ी जरूरी है कि आप कितना भी डूब गए हों अपने किरदार में, एक धागा या एक थ्रेड जिसको कहते हैं, ऐसा हमेशा रहना चाहिए जिसमें आपको इस बात का एहसास रहे कि आप वो किरदार नहीं है, आप हैं तो पंकज कपूर ही, लेकिन आप उस किरदार को निभा रहे हैं। निभाते हुए जब आप उसको निभा रहे हैं उस वक्त लोगों को ये ना लगे कि आप पंकज कपूर हैं, तो वो एक हल्का सा धागा जो है आपके और आपके कैरेक्टर के दरमियान बना रहता है और वो बनाए रखना जरूरी है। अगर ना रहे तो या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा या फिर आप इतने उसमें डूब जाएंगे कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि कर तो आप अभिनय ही रहे हैं ना।

0: जो गाने हम आपको पंकज कपूर अभिनीत फिल्मों से सुनवा रहे हैं, वो गाने उन पर फिल्माए तो नहीं गए हैं, लेकिन इनके जरिए हम पंकज कपूर के बेहतरीन अभिनय की याद तो ताजा कर ही सकते हैं। सुधांशु और सुधीर मिश्रा के धारावाहिक कब तक पुकारू में पंकज कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये धारावाहिक रांगे राघव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। सुखराम की जटिल भूमिका को पंकज कपूर ने बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता से निभाया था। इसी तरह डॉक्टर राही मासूम रजा की कृति नीम का पेड़ पर आधारित टीवी सीरियल में बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की थी पंकज कपूर ने। इन दोनों किरदारों को पंकज बेहद चैलेंजिंग मानते हैं।
1: बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो अवधि मुझे बोलनी नहीं आती है और अवधि में वो काम करना था, और दूसरा एक ऐसे आदमी का किरदार था जो बेगार है, और ये आज भी जिसको बॉन्डेड लेबर कहेंगे हम आज के जमाने में, आज भी लोग हैं, लेकिन वो कहानी चूंकि 40s की थी तो उस जमाने के दौर के अंदर उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, उसका अपना बिहेवियर, उसकी अपनी एम्बिशंस और ये सब चीज़ें दर्शाने में बड़ा ही एक अलग किस्म का लुत्फ महसूस हुआ। और एक और टेलीफिल्म मैंने की थी जो भी बहुत कम लोगों ने देखी है, उसको केतन मेहता साहब ने डायरेक्ट किया था, किसी एक फूल का नाम लो। उसमें पाठक नाम का एक राइटर है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन है और एक इंटरेस्टिंग स्टडी है किसी एक इंसान की। तो ये कुछ रोल हैं जिनको करने में बड़ा मजा आया।
0: 1991 में तपन सिन्हा की फिल्म एक डॉक्टर की मौत में भी कमाल किया था पंकज कपूर ने। भूमिका थी डॉक्टर दीपांकर रॉय की।
1: तपन सिन्हा साहब जो डायरेक्टर थे डॉक्टर की मौत के, उन्होंने राख फिल्म ही देखी थी और उसी को देखने के बाद उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए रोल ऑफर किया। अब तपन सिन्हा साहब तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े जाने माने, बहुत सी फिल्में, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बंगाल में, बंगाली में बना चुके हैं, और लेकिन मेरा इसरार हमेशा से जैसे कि स्क्रिप्ट पे रहता है, तो स्क्रिप्ट मुझे उन्होंने मुहैया करवाया। मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे रोल बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं करना चाहूँगा, तो ऐसे उस फिल्म में दाखिला हुआ मेरा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शबाना इसमें दूसरा रोल कर रही हैं, फीमेल कैरेक्टर कर रही हैं, और करीबन 40-45 दिन की शूटिंग थी हमारी बंगाल में। ज़्यादातर काम कलकत्ते में था और कुछ चांदीपुर में, कुछ दिनों का आउटडोर था। तो शबाना बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और उनके साथ बड़ी ही अच्छी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारी रही, और तपंदा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसे निर्देशक हैं जो अपने अभिनेता को बहुत सी छूट देते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं उसके लिए जिसमें वो अच्छा अभिनय कर सके। तो कुछ टेक्निकल चीजें भी इस फिल्म के अंदर थी जिसको लेकर के कुछ डॉक्टर्स थे वहाँ कलकत्ते के लोकल, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की और हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज वगैरह दिया गया, जो कि इस किरदार को निभाने के लिए हासिल करना बहुत जरूरी था।
0: थिएटर के दौरान पंकज ने नाटक एक रुका हुआ फैसला में बेहतरीन काम किया था। आगे चलकर इसी नाटक पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी।
1: उससे पहले हमने एक नाटक किया था एक रुका हुआ फैसला नाम से, तो उसके जो डायरेक्टर थे और मेरे मित्र भी थे जिनके साथ मैंने सबसे ज्यादा काम थिएटर में किया है, रंजीत कपूर साहब, वही इस फिल्म को लिख रहे थे। तो जब कास्टिंग की बात आई तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, और दरअसल में फिल्म में ओरिजिनली जो रोल ओमपुरी साहब ने किया है आहूजा का, वो करने वाला था, लेकिन बाद में तनेजा का रोल जो कर रहे थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, या तो इन लोगों ने बतौर दोस्त मुझसे कहा कि भाई इसकी बजाय अगर तुम ये रोल ले लो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे कोई एतराज नहीं था क्योंकि मुझे तो अभिनय करना था। तो इस तरह से ये फिल्म मेरे हाथ लगी। उस फिल्म का एक किस्सा जरूर मैं आप बताना चाहूंगा। उसमें एक सीन है जिसमें बिल्डर और कमिश्नर और ये सब लोग एक खुली लिफ्ट में ऊपर बिल्डिंग में जा रहे हैं, और उस बड़ी खतरनाक किस्म की लिफ्ट थी क्योंकि एक सिर्फ एक तार से टंगी हुई थी। और तो शूटिंग खत्म हो जाने के बाद अगली शूटिंग हमारी कुछ 20वें माले पे थी,

0: जो बिल्डर साहब के बेटे थे उन्होंने कहा कि इसी लिफ्ट में लद के ऊपर चले चलते हैं और ये लिफ्ट ऊपर लैंड कर जाएगी लैंडिंग पे, वहां से आप उतर के फिर नीचे दो फ्लोर उतर के चले जाइएगा। तो करीबन 20 लोग उस लिफ्ट के अंदर चढ़ गए मेरे मना करने के बावजूद, लेकिन उसने कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना वेट तो चली जाता है। और फिर जब लिफ्ट पांचवें छठे माले तक ऊपर गई तो जाके वहां हवा में अटक गई और हम सब लोग 20 के 20 लोग हवा में लटक रहे थे। और ये बिल्डर साहब का बेटा भी हमारे साथ था, जब वो लिफ्ट वाले से कहता था कि भाई इसको ऊपर लो तो लिफ्ट वाला बाएं देखने लगता था, जब उससे कहता था नीचे लो तो दाएं देखने लगता था। फिर कुछ देर वहां लटकने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको किसी तरह से बिल्डिंग के पास ले लो। तो जब बिल्डिंग के पास लिया गया तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई कोई भगदड़ ना मचाए और एक एक करके आराम आराम से उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबने भगदड़ मचाई। और ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई मरा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग और उस लिफ्ट के दरमियान करीबन 1 फुट का फासला था। जब हम उतर के ऊपर लिफ्ट वाले के पास पहुंचे और पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि तार कट रहा था, आधे से ज्यादा तार कट चुका था, अगर वो ऊपर की तरफ खींचता तो भी टूट जाती लिफ्ट, अगर वो नीचे की तरफ फेंक जाने देता हमें तब भी लिफ्ट टूट जाती और हम सब लोग मर जाते। तो ये एक हादसा उस फिल्म का मुझे याद है जो जिंदगी भर याद है।
1: 1989 में फिल्म राख में काम करने के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था पंकज कपूर को, याद होगा इस फिल्म में पंकज के साथ आमिर खान ने भी काम किया था। उनके कुछ चर्चित धारावाहिक हैं ऑफिस ऑफिस, जबान संभाल के, दुनिया वगैरह वगैरह। इससे पहले उन्होंने फटीचर, मोहनदास BA LLB, वाह भाई वाह, साहब जी बीवी जी और गुलाम जी में अभिनय किया था और काफी कामयाबी हासिल की थी। गुलजार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के टीवी रूपांतरण में होरी की एक यादगार भूमिका भी पंकज कपूर ने टीवी पर अदा की थी, आपने जरूर देखा होगा।

सन 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म 10, आपने जरूर देखी होगी और आपको याद होगा शानदार किरदार पंकज कपूर का फिल्म 10 में। दोस्तों सन 2007 में पंकज कपूर की 3 फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, धर्म, डब्लू अम्ब्रेला और हल्ला बोल में भी पंकज नजर आए थे। एक फिल्म बनी थी सन 2011 में जो ऑफिस ऑफिस सीरियल का ही एक प्रतिरूप थी और इसका नाम था चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। ये तो आप जानते हैं कि जाने माने स्टार शाहिद कपूर के पिता हैं अभिनेता पंकज कपूर, जो निर्देशन में भी अपना कदम जमा चुके हैं। शाहिद को उन्होंने निर्देशित किया फिल्म

0: तो ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने एक्टर पंकज कपूर पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से सफर छाया गीत का कुछ ही पलों के इंतजार के बाद

0: इको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: कभी ये अफसाने खुशी के गीत बनकर झूमने लगते हैं, तो कभी देते हैं दर्द की पुकार। पर जो भी है, हर दिल का एक अफसाना होता है, या यूं कहें कि हर दिल एक अफसाना लिखता है, अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का, जिसे कभी दिल खुद तो कभी पूरी की पूरी दुनिया गुनगुनाती है।

हम चल रहे तेरा ही जिंदगी पर अकेले और खामोश, तुम क्या मिले राही बनकर कि जिंदगी को एक नया अफसाना मिल गया। इस अफसाने में है दीवानगी, इसमें है दरिया की रवानगी। कोरे कागज जैसी जिंदगी पर जो अफसाना तूने लिख डाला, अब उसे ही तो ताउम्र पढ़ते जाना है हमें।

हमारे सामने आते ही शब्द खो से जाते हैं, जुबा रुक सी जाते हैं कहीं। जब तुम ही बसे हो इन निगाहों में, तो क्यों ना इन नजरों से ही मोहब्बत का अफसाना लिखा जाए। चाहत की ये दास्तां आखिर क्यों सुने कोई और, ये राज़े मोहब्बत तो बस दो दिलों के दरमियां ही महफूज रहे।

खबर को खबर न मिले, समझने वाला समझ ले। ये भी अंदाज है इस बात के इजहार का, हमेशा आँख

जिंदगी की राहों पर साथ चलते हुए बढ़ता जाता है मोहब्बत का अफसाना। इस अफसाने में कभी मौसम और कभी महकती रातों की बातें, तो कभी बिखरी जुल्फों और काले घटाओं की बातें होती है। यही अफसाना कभी कलियों का दिल बनकर धड़कता है, तो कभी क्षमा पर परवाने की प्रीत झूमने लगती है, गाने लगती है।

मोहब्बत के अफसाने में बस प्यार की ही बातें हो, ऐसा तो नहीं होता। इन अफसानों में तो झगड़े भी होते ही रहते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार नायिका ही रूठे और नायक उसे मनाए। कई अफसाने तो ऐसे भी बने हैं जिसमें नायिका ही अपने नायक को मनाने में लगी है। पर जो भी हो, हर अफसाने के अंजाम में सारी शिकायतें दूर हो ही जाती है, और तब दिल गा उठता है कोई प्यार भरा गीत।

पड़ना, सावन के वो झूले, गर्मी की वो रातें, और हम अपनी छत से करते थे एक दूसरे को इशारे। इन हसीन यादों से ही तो बनता है हमारा ये छोटा सा प्यार भरा अफसाना।

अफसाना आज का नहीं है दोस्तों, ये अफसाना बहुत पुराना है। इस अफसाने में है बचपन की शरारतें, इसमें है बचपन की दोस्ती जिस पर आगे चलकर मोहब्बत का रंग चढ़ा। बिना बात के वो रूठना, वो मनाना, वो साथ साथ कविताएं।

दिल लिखता तो चला जाता है जिंदगी के अफसाने, पर ये काम इतना आसान कहाँ। अफसाने के किरदार ही इसे रातों को जगाते हैं। इन तमाम अफसानों में एक है मोहब्बत का अफसाना, जिसके होते हुए जमाने का कोई भी अफसाना भला कौन पढ़ना चाहेगा। और इन किरदारों में है एक ऐसा चेहरा जो हम सफर है इस अफसाने का। जब साथ हो इसका तो भला दुनिया से क्यों डरा जाए। जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी राहों से गुजर कर अपनी मंजिल पा ही लेता है मोहब्बत का ये प्यारा सा अफसाना, जो धड़कता है हर दिल में।

अफसानों की ये बातें आप सुन रहे थे छाया गीत के सफर में, अपनी हम सफर ज्योति के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी दे चंडीगढ़ के अंदर तो इस वेले तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम सुरसांझ। तुम सुनवा रहे हैं अगला गाना मानक दी आवाज विच।

आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो इस वेले तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम सुरसांझ। ते हुण सुनवा रहे अगला गाना, आवाज़ है अल्फाज़ दी।

FM 107.2 MHz से या आकाशवाणी है तो तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले रात दे 11 बजन वाले ने तो हुण तो थोड़ी ही देर च आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो समाचार रिले किते जाणगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD News को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने

0: योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz 11:25 ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।